और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, को मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो।

अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है।

0: इज्जत व कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन व सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता। आमीन।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मुगल 03002304372
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुधा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

कमनाई जी आखिरी रस्मन ला ईरान के हफ्ते की मोहलत दिनी है। ईरान अमरीका से ठाह करण ला बेताब है एंड डील ला मरी रो है। अमरीकी सदर ट्रंप चाहे तो अमरीका ईरान के अगुने सुप्रीम लीडर के आखिरी रस्मन ला गालन के रोको है। अमरीका विंजला के एक डी में शिकर नी ईरान के हारा है। ईरान बीहर आबाद थियण चाहे तो असा सुठा मानू आयो। ईरान के अगुने सुप्रीम लीडर के आखिरी रस्मन ला हफ्ते की मोहलत दिनी है।

0: ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदनि एटमी प्रोग्राम में मंजमद असासन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़ा जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385569
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಲ್ ಆಣಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಪೋ ಅ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್
1: ಸರಿಯಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಟಿಎರ್ ಎಂಗಲ್ ಚೇನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಹಿ ದರವಾಜಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಾ ಚೌಂಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇತಿ ಕ್ರೇಶ್ ಐ ರಂಗ ವಗೈರಾ ಬಾಜ಼ಾರ್ ಕಾ ಬಾರಿಯ ದಸ್ತಯಾಬ್ ಆಹಿನ್
0: ಹಾಣೆ ಯಚು ಮೆಹರಾನ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಜ್ದ ಬಲೋಚ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಹಾಲ್ ಆಣಿ
1: ರಾಬ್ತೆ ಲಾಯ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಮುಗಲ್ 03-22-04-372 ಐ 02-42-46-01-00
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद

कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर।

0: कारोबार अहिड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योम शहादत अज मल्हायो पियो वञे। सदर मुल्कत वजीर आजम फील्ड मार्शल एंड सर्विसेज चीफ्स पारां खिराज अकीदत पेश। कैप्टन शेर खान 5 जुलाई 1999 में करबला कारगिल के महाज दुश्मन से विढ़ंदे शहादत माणी। दुश्मन पर कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी जो एतराफ़ कयो। शहीदी मज़ार ते गुलन की चादर चाढ़ी वेंदी। पाक फौज के चुस्त दस्तो सलामी पेश कंदो। सदर आसिफ ज़रदारी भेटा पेश कंदे जो तो कैप्टन कर्नल शेर खान की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रहंदी। पाकिस्तान के शहीद असाजा कौमी सरमायो आहिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण आए तो शहीदन की कुर्बानी के हमेशा कदर एतराम से याद रखो वो। कराची में अज गर्मी की शिदत में वाद जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब अज कराची की गर्मी पद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तई वही सके तो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी। दखण ओलह जो हवाओं 19 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हली रही हैं। आईसीएन में पानी खोट खिलाफ एहतजाजन जो सिलसिलो जारी। शिदादकोट नदो में एहतजाज। शिदादकोट में एसयूपी पारा पानी खोट खिलाफ कोटो मोट चौक धरणो है वो। नदो में भी आबादगरन पारा एहतजाज। आपाशी अमले खिलाफ नारेबाजी। अगवाण जो तो पानी न होने सब फसलन की पोखाई नी सकी है। पानी फराम करे मुआशी कतलेआम बंद कर वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज तई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385769
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
6: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836। मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइंबा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301 91 896

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन, और यहाँ पर सुन लिया है हमने एक ब्रेक में एक और सॉन्ग मजे मजे का। तो जी देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होने का मकसद ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन मेरे साथ मौजूद है और किसने मुझे जवाब अभी तक दिया और

मेरा जो सवाल था, सवाल यकीनन आप लोगों ने सवाल ये था कि यार आपने मुझे बताना था कि अमजद और असलम दो दोस्त हैं और अमजद की मुर्गी एक दिन असलम के घर चले जाती है और वहां पर जाके वंडा दे देती है। तो आपने जस्ट ये बताना है कि वंडा किसका हुआ, तो आपने मुझे बताना और बताने के साथ साथ आपने अपने पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है, ताकि जो सॉन्ग आप मुझे बताएंगे अगर वो आपका जवाब ठीक होगा तो सॉन्ग को मैं कर दूंगी प्ले, और अगर नहीं हुआ तो वो प्ले नहीं हो पाएगा सॉन्ग आपका। तो लास्ट में तो वैसे भी मैं राइट आंसर बता देती हूँ आप सबको, लेकिन 12 बजे से पहले आपने जवाब देना है तो वो ज्यादा विनर होगा हमारे इस सेगमेंट का। यार यहाँ पर मेरे पास एक और सॉन्ग है, मजे का दिल कह रहा है वो सुने आपके साथ। तो एक न्यू ड्रामा आया है, आपको पता है जब्त ड्रामा आया है, तो मतलब उसकी तो बहुत सारी किस्तें भी चल गई हैं। मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ कुछ देखा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही उसकी ओएसटी सॉन्ग भी सुन लेते हैं। तो जी यहाँ पर करने लगी हूँ मैं प्ले और उसका ओएसटी सॉन्ग भी साथ मिलकर सुनते हैं, तो रहिएगा।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग एक सॉन्ग, और जो मैं चाह रही थी कि मैं अपने साथ आपको सुनाऊं, तो हमने साथ में सुना, क्योंकि कोई भी न्यू चीज़ होती है, कोई भी न्यू सॉन्ग होता है, कोई भी न्यू बात होती है, तो आपके बिना तो वो अधूरी होती है। तो हमेशा मैं हमेशा कोई भी न्यू चीज़ होती है तो मैं आप लोगों के साथ सुन रही होती हूँ। तो आज भी ऐसे ही हमने किया, एक न्यू ड्रामा था तो जिसका मैंने ओएसटी आपके सामने साथ में प्ले किया और सुना भी है। देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है और हमें कौन कमेंट करके क्या जवाब देता है मेरे सवाल का। तो सवाल सुन लेते हैं जी।

तो जी वेलकम बैक मंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सुन रहे थे यहाँ पर फैजल की आवाज में एक सॉन्ग, क्योंकि यार इनकी आवाज में अगर हम सॉन्ग नहीं सुनते तो हमारी सुबह का आगाज होता ही नहीं है। तो जी बिल्कुल आज भी ऐसे ही हुआ था कि आज भी हमने सबसे पहले स्टार्ट में आसिफ अज़हर की आवाज में सॉन्ग प्ले किया था। ठीक है, सारे सॉन्ग अपनी जगह, लेकिन फैजल अली की आवाज बिल्कुल अपनी जगह। तो जी ये मैंने सॉन्ग जो प्ले किया था वो एक जवाब आने की सूरत में भी किया था, और जैसा कि आपको पता हमेशा कर रही होती हूँ तो इसलिए भी किया था। तो आपने मुझे अभी तक जवाब जो दे रहे हैं सारे, लेकिन जवाब देने के साथ साथ आप लोग मुझे सॉन्ग का नाम नहीं बता रहे। अगर आप लोग मुझे सॉन्ग का नाम नहीं बताएंगे तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि या आपको कैसे पता चलेगा कि आपने राइट आंसर दिया था कि नहीं। तो मैंने एक सॉन्ग तो प्ले कर दिया, इसका मतलब है कि उनका जवाब बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने प्ले किया है। लेकिन अभी जो आप लोग मुझे जवाब देते चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कहते हैं कि यार इस सवाल का जवाब है ये। ओके जी, लेकिन मैं बता दूंगी, ये मुझे पता है कि इसका जवाब क्या है। अगर आपको खुद को पता करना है टाइम आने से पहले या मेरे बताने से पहले पता करना है, तो आप लोग मुझे सिंपल अपनी फेवरेट सॉन्ग का नाम आप लोग मुझे जो है सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे कि, और ताकि अगर मैं प्ले कर दूंगी तो आप लोग समझ सकेंगे कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। आप लोग मुझे सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, सॉन्ग नहीं बता रहे। अगर सॉन्ग नहीं बताएंगे तो यार इस तरीके से तो आपको भी नहीं पता चलेगा और मुझे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने एक जो मुझे जवाब दिया है अब्दुल रजाक आपका, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग मुझे यहाँ, अगर आप इस वक्त मुझे अभी कोई सॉन्ग का नाम बता देते हैं और अगर मैं वो प्ले कर देती हूँ तो इट्स मीन यू आर राइट। क्या आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है या आप खुद भी, आप तो परफेक्ट ही होंगे लेकिन मुझे पता है और जो मेरे साथ मौजूद होते हैं वो सारे के सारे परफेक्ट ही होते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक है, ओके, आप मुझे यहाँ पर जो ना जवाब दे दें तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप लोगों का वेट। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और सॉन्ग मौजूद है यार आसिफ अज़हर की आवाज़ में, मुझे अच्छा लग रहा था वो जब मैंने सॉन्ग सुना। तो आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होते हैं आपके बिना सुने मैं नहीं सुन रही होती, लेकिन वो अगर सामने आ गया मैंने उसको वहीं से स्टॉप किया, मैंने कहा नहीं ये सुनना है, तो मैंने अपने सारे लिसनर्स के साथ। तो यहाँ पर सॉन्ग को मैं करती हूँ प्ले, उसके बाद हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब और न्यूज़ ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, वापस आके मैं अपने सवाल का जवाब आप लोगों को बता दूंगी टाइमली। तो जी यहाँ पर देर ना करें, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ। यहाँ पर कर रही हूँ मैं इंतजार, मैं अपना सवाल आप लोगों से रिपीट करती चाहती हूँ। सवाल मेरा ये था कि आपने जस्ट मुझे इतना बताना है कि जो मैंने आपसे पूछा है, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि यार अमजद और असलम दो दोस्त हैं और अमजद की मुर्गी असलम के घर चली जाती है, वहां पर जाके वो दे देती है अंडा, तो आपने सिर्फ ये बताना कि वो अंडा किसका होगा। इतना सा आसान सवाल है, आपने दिमाग पे जोर नहीं डालना, सिर्फ दिमाग को थोड़ा सा चलाना है उठने के साथ। अब ये भी नहीं पता कि आप लोग उठे हैं कि नहीं उठे, जब भी आपसे कहती हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग नींद से जाग गए हैं कि नहीं। तो आपने मुझे बताना है, यहाँ पर एक सॉन्ग मैं करती हूँ प्ले, उसके बाद हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है ये भी पता होना लाजमी है। ओके जी, तो दिया है मैंने सॉन्ग प्ले, रहिएगा मेरे साथ सुनते हैं।

तो जी यहाँ पर चलते हैं अभी हम लोग न्यूज ब्रेक की जानेब और सुन लिया है हमने बहुत सारे सॉन्ग अभी और अभी चलना चाहिए न्यूज ब्रेक की जानेब पर वापस आएंगे करेंगे मजे मजे की बातें और अपने सवाल के जवाब आप लोगों से मैं लूंगी 12 बजे के बाद और अभी सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्योंकि बहुत टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया था। तो जी अभी आप लोगों के जो है सेगमेंट आप लोग हार जाएंगे फिर मेरा देखते हैं जैसे मुझे जवाब दिया फिर वही मेरा सेगमेंट का विन कर सकेगा। तो जी यहाँ पर चलते हैं न्यूज ब्रेक की तरफ वापस आएंगे करेंगे सवाल का जवाब को कलेक्ट और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी तो रहिएगा मेरे साथ एंजॉयगा नहीं।

0: साथ जिंदगी भर गिब्स।
1: इसमें है हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ।

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद दाशनामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अलरबिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि, एटमी प्रोग्राम ऐं मनजमंद असासनि बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जे तदफ़ीन बाद थींदो।

कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योम शहादत अज मल्हाए पे वे सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की आखिरी आरामगाह तकरीब सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल सर्विस चीफ पारा खिराज अकीदत पेश कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल की महास दुश्मन से विढ़े शहादत बाणी दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी जो एतराफ कर सदा आसिफ सरदारी भेटा पेश कर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाजवाब कुर्बानी हमेशा याद रही पाकिस्तान जो शहीद असंदा कौमी सरमायो है वजीर आजम शहबाज शरीफ चवना तो शहीद की कुर्बानी की हमेशा कदर एतराम से याद रखो वो कराची में अज गर्मी की शिदत में वाद जो इम्कान मौसमियात खाते मौजूद अज कराची की गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताई वनी सके तो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी दखण ओलह जो हवाओं 19 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हली रही हैं। एसयूपी पारा पानी कोर्ट ए सिंध के वसीलन के फुलट अवाम दुश्मन बजट खिलाफ मुजाहरा शिदात कोर्ट मंजूराबाद बाडा ठुल कुंडी तंगवानी बेन शहर में भी एहतजाजी मुजाहरा अगवान में चवना तो सिंध हुकूमत सिंध के बजट में अरबे रुपया पंजाब कश्मीर ए गिलगित में खर्च कया सिंध के वसीलन के वफाक राहता उ हणी रहा है पानी से भी धाड़ो हयो पे वे जैं खिलाफ जदोजहद जारी रही

नारोबर सां अणॼातल शख़्स जो लाश अत अछड़ी थरवार इलाके में काहोरी में अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो। लाश जी सुञाणप नाहे थी सघी। ऐं गनकोट भरिसां डांसन शाख में किरण सबबि नींगर ॿुॾी पिया। पुल टुटण सबबि डांसन हादिसे जो शिकार। ॿुॾी पियल नींगरनि में 16 साल मुजीब ऐं 12 साल अब्दुल गफ़ार गोलो ॿुॾी पिया। ॻोठाणनि पारां पंहिंजी मदद पाण त नींगरनि जी गोला जारी आहे। इंतिज़ामिया खां मदद जी अपील।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन. और यहाँ पर जैसा कि आप और मैं मौजूद हैं एक साथ, अभी भी हमारे पास तकरीबन एक घंटा से थोड़ा कम टाइम रह गया है. तो जी जैसा कि आप सुन रहे हैं GFM 88 सखर, और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं. वो देख लेते हैं कौन कौन अभी मेरे साथ कौन कौन मौजूद है, किसने अभी मुझे ज्वाइन किया, जिसने मेरा सवाल नहीं सुना उसको मैं सवाल भी बताऊंगी. तो जी मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा से यही होती है कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन किया करें. टाइमली ज्वाइन करने से ये होता है कि यार आपके सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है, आपके पसंदीदा सॉन्ग प्ले चलाने का जो है टाइम भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है. लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है ये बात. आप लोग कहते हैं यार आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया, आपका सॉन्ग इसलिए प्ले नहीं हो पाता बाज़ोकात के टाइम कम होता है. तो आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन कर लिया करें. ज्वाइन करने के साथ आप लोग मुझे टाइमली जवाब दे दिया करें. जी जिससे मेरा अभी सवाल नहीं सुना, सवाल मेरा ये था कि आपने मुझे बताना था कि अमजद और असलम दोनों दोस्त हैं. अमजद की मुर्गी चली जाती है असलम के घर पे, वहां पर जाके दे देती है वो एक अंडा. तो आपने जस्ट ये बताना है कि वो अंडा किसका होगा. जी मैं यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट आपको और देती हूँ, 10 मिनट के बाद मैं आपको अपना सवाल का जवाब बता दूंगी. जिसने अपने बताना है वो अभी बता दे, नहीं तो आप लोग सारा ये सेगमेंट हार जाएंगे जिसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया. और जिसने दे दिया उसके लिए मैंने सॉन्ग भी प्ले कर चुकी हूँ. बहुत सारे सॉन्ग ऐसे प्ले हो चुके हैं जिससे मुझे जवाब दिया और मैंने उनका सॉन्ग प्ले किया. तो जी ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना है और कुछ भी नहीं करना. आप जहाँ लेटे हुए वहीं पर लेटे लेटे आप मेरे सवाल के जवाब मुझे दे सकते हैं. मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप उठ के बैठ जाएं, लेकिन आप लोग तो भाई शरीफ हैं, शरीफ तो बस शरीफ ही होते हैं. यहाँ पर देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है. हमारे साथ कौन मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं जलोड़ी से खाली कलशारी, कहते हैं जवाब है अमजद, जवाब है अमजद का. अच्छा अंडा अमजद का. शमन मिराली मिट्टू और गाले प्ले करें. मिराली मिट्टू प्ले करें. अच्छा जी इनका गाना हम प्ले करें. ओके जरूर हम लोग प्ले करेंगे. और जी आपने मुझे जवाब दिया, जवाब मुझे मिल गया है. मेरा राइट आंसर सुनने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. और 10 मिनट मैंने आप लोगों को दिए हैं, जिससे मुझे 10 मिनट के अंदर और अपने सवाल के जवाब देना चाहते हैं जो वो दे सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही मैं जो है आपको जो है अपना राइट आंसर बताऊंगी, ताकि उसके बाद ही आप लोग मुझे खुद बता सकें कि आपका जवाब ठीक था या रॉन्ग था जिसका मैंने सॉन्ग प्ले नहीं किया. तो आपको मैं एक ऑप्शन देती हूँ, इसी वजह से देती हूँ कि यार अगर आपका जवाब ठीक होगा, आपको अगर पहले से पता करना है तो आप लोग अपना पसंदीदा सॉन्ग मुझे बता सकते हैं, ताकि अगर आप सॉन्ग मुझे बताएंगे वो मैं सॉन्ग प्ले कर दूंगी तो आपको आसानी हो जाती है. आपको ये समझने में कि आप लोग जीत गए हैं मेरा सेगमेंट. तो जिसका सॉन्ग प्ले किया है वो तो आई थिंक ये समझ ही गया होगा. तो जो रह गए हैं उसको इसलिए कह रही हूँ, जिसने मुझे सवाल का जवाब दिया है वो मुझे सॉन्ग का नाम भी जरूर बता दें, और जिसने मुझे अभी तक जवाब भी नहीं दिया तो वो जवाब भी मुझे दे दें.

तो जी देखते हैं यहाँ पर हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं नजीर खुसो, कहते हैं सबतपुर बलोचिस्तान से वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जी कैसे हैं आप नजीर खुसो, बहुत टाइम बाद आपने मुझे ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद आपने बहुत देर से भी ज्वाइन किया है आज मुझे, और सोहबतपुर बलोचिस्तान से आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आपने हर संडे मेरे साथ रहना है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ, तो टाइमली मुझे ज्वाइन किया गया मेरे सवाल सुनाकर। लेकिन अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना तो मैं आपको सवाल रिपीट कर देती हूँ। मेरा सवाल ये था कि आपने मुझे बताना है कि देखें अमजद और असलम दो दोस्त हैं और अमजद की मुर्गी चली जाती है असलम के घर पे, वहां पर जाके वो देती है अंडा और आपने सिर्फ ये फैसला करके बताना है कि यार वो अंडा किसका हुआ। ओके, और अब्दुल रजाक मुझे सवाल का जवाब दे दिया है अब्दुल रजाक ने भी, लेकिन जो सवाल का सॉन्ग का आपने मुझे दिया है सॉन्ग जो है ना वो है इंडियन सॉन्ग, और इंडियन सॉन्ग हम प्ले नहीं कर सकते तो अब्दुल रजाक ने सॉन्ग को किया है चेंज, कहते हैं फौजिया सुमरों का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें। ओके जी, जरूर हम लोग प्ले करेंगे, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम सॉन्ग प्ले करेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब ठीक था तो हमने सॉन्ग को कर दिया है प्ले। इसके अलावा यार एक और सॉन्ग मेरे पास मौजूद है जो मैं कह रही हूँ कि सुने तो आपके साथ सुने, तो करती हूँ वो मैं सॉन्ग प्ले, तुझे कर दिया है मैंने सॉन्ग प्ले, सुनते हैं सॉन्ग को भी।

जैसा कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग यार तो यार होता है और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और जब भी सुनते हैं इसको एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं और एक अच्छा लग रहा होता है। तो मतलब एक कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं ना यार जिसको आप बार बार भी सुनते हैं तो दिल नहीं भरता। ये वही सॉन्ग है जिसको बार बार भी सुनेंगे दिल नहीं भरेगा। तो जी अभी देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर बिरोही। हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं कि विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरण से अली अकबर बिरोही। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और सॉन्ग प्ले करो बिरोही। भाई आपने मेरे सवाल के तो जवाब दिया नहीं। सॉन्ग तो मैं प्ले कर दूंगी और सॉन्ग तो प्ले हो ही रहे मुसलसल आप सुन भी रहे हैं मेरे सॉन्ग। लेकिन आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अली अकबर बिरोही। आपने मुझे ज्वाइन तो किया आपने मेरे सॉन्ग नहीं सॉन्ग तो सुने होंगे बल्कि लेकिन आपने मेरा सवाल भी सुना होगा। लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर देती हूँ। तो जी मेरा सवाल ये था कि आपने मुझे बताना है कि अमजद और असलम दो दोस्त हैं। अमजद की मुर्गी चली जाती है असलम के घर पे और असलम अब फिर वहाँ पर जाके वो दे देती है अंडा और आपने ये बताना है कि वो अंडा किसका हुआ। सिर्फ इतना सा सवाल मैंने आपको के आगे रखा है। आपने सिर्फ उसका जवाब देना है कि वो अंडा किसका हुआ। तो देखते हैं अभी आप मुझे उसका जवाब क्या देते हैं। जैसे ही आप मुझे जवाब देंगे तो जी हम आपके पसंद का सॉन्ग भी प्ले कर देंगे। इसमें कोई मसला नहीं है लेकिन आपने मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा जी जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं जिसने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करने के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने 8881 पे एस कार्ड लिखी विद योर सिटी नेम आप मुझे एसएमएस कर

0: निकलना पड़ता है, चाहे छुट्टी हो चाहे ऑफिस वर्क डे हो, क्योंकि बाहर तो जाना ही पड़ता है ना, चाहे फीमेल्स हों या मेल्स हों। तो आपने मुझे बताना है कि आप लोग ऐसा क्या जॉब करते हैं, ऐसा क्या काम करते हैं कि आपने बाहर जाना पड़ता है, और गर्मी किसको ज्यादा लगती है, गर्मी तो हो रही है लेकिन लगती किसको ज्यादा है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। ये कुछ लोग होते हैं जिसको कम गर्मी लग रही होती है, किसको थोड़ा बस कहते हैं ठीक है यार काम तो करना है, तो ऐसे ऐसे कौन कौन लोग मेरे साथ मौजूद हैं मुझे ये भी पता होना चाहिए। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप लोग जाते हैं बाहर या नहीं जाते, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि गर्मी तो बहुत शदीद हो रही है अभी। यहाँ पर टाइम होता है वापस एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे मजे मजे की बातें, और मैं अपना राइट आंसर भी आपको दे दूंगी जैसे ही ब्रेक से वापस आऊंगी। तो देर नहीं करिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, सुनिएगा और रहिएगा मेरे साथ ही, क्योंकि मैं आते साथ अपना राइट आंसर आपको बता दूंगी, देन उसके बाद हम करेंगे मजे मजे का एक और सॉन्ग प्ले, उसके थोड़ी सी और बातें, देन और सॉन्ग प्ले। तो जी आपने जाके मुझे जवाब देना और अपने सॉन्ग को जो है मुझे भेज देना है, ताकि अगर आपका जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग हम प्ले कर देंगे। ओके जी, रहिएगा मेरे साथ।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9651
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

जैसा कि आपको पता है कि सुन रही थी यहाँ पर हम लोग एक फरमाइशी सॉन्ग, क्योंकि वो भी हमारा सेगमेंट जीत गए, तो यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे दूसरी दूसरी बातें, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, तो जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना भी जरूरी है, तो चलते हैं, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं, बाकी की बात रहेगा मेरे साथ।

अल्ताफ अली गादी बलोच कराची से, कराची से आप मुझे सुन रहे हैं अल्ताफ अली गादी बलोच, कैसे हैं आप? और बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया है, ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ ओनली ओनली हर संडे। आओ बात करें मैं जी FM 88 पर। तो जी आप सुन रहे हैं आवाज विद आरजी सना की। मुझे ये बताना कि आपको मेरा शो कैसा लगा, अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम सुना तो आपने मुझे बताना है कि मेरा शो कैसा लगता है आपको या कैसा लगा है आपको, और नेक्स्ट टाइम आपने मुझे ऐसे ही ज्वाइन करते रहना क्योंकि मुझे रहेगा आपका इंतजार। और ये हमारी एक फैमिली होती है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और अपने 2 घंटे एक्सपेंड ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे 2 घंटे हमारे हैं नहीं और पता ही नहीं चलते इतनी सारी बातें हो जाती हैं इन 2 घंटों में। तो इसके अलावा हमारे पास साथ मौजूद हैं शहबाज अली जो जमाली कहते हैं कि सॉन्ग प्ले करें। जी सॉन्ग मैं प्ले करूंगी लेकिन अगर यहाँ पर मेरे कोशिश है कि मैं सॉन्ग प्ले करूँ। आपने मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया लेकिन कौन सा सॉन्ग, आपने मुझे नाम तो नहीं बताया।

या कम्प्लीट आप अगर आप मुझे सॉन्ग का नाम लिख देते तो मुझे आसानी हो जाती है सॉन्ग को ढूंढने में. लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि जो है ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपने मुझे लिखा है. तो कोई बात नहीं, अगर आप नेक्स्ट संडे मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका सॉन्ग प्ले कर सकूं. लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ होना मौजूद जरूर होगा ना, क्योंकि आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे तो ही आपका सॉन्ग प्ले हो सकेगा. तो आपने रहना होगा मेरे साथ उस दिन भी. आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गए और 10 मिनट भी पूरे नहीं होते, जिसमें हमने सॉन्ग भी प्ले करना होता है और जिसमें हमें टाटा वाइब भी करना होता है. क्योंकि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के अंदर सिर्फ 5 मिनट हमारे पास होते हैं और 5 मिनट हम लोग दे देते हैं एक सॉन्ग को. तो कोई बात नहीं, और रहेगा जो है ना हमेशा मेरे साथ ही. अगर मेरे एक हफ्ते बाद अगर मैं आप लोगों के पास आती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ते तक हम लोग साथ नहीं होते. हम लोग एक हफ्ते में भी साथ होते हैं. आप लोग लिख लिया करें, बहुत सारी जो बातें होती हैं जो करनी होती हैं वो आप मेरे लिए लिख लिया करें, क्योंकि साथ में हम लोग वो बातें कर लेते हैं. तो थोड़ा जो है ना मतलब एक मन फ्रेश हो जाती है. जिसके बाद दोस्त नहीं होते वो मुझे दोस्त भी समझ लेता है, जो जिसके पास बहन नहीं है वो मुझे बहन भी समझ लेता है. तो मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं अभी मौजूद, तो जो सिस्टर मुझे बनाते हैं और मैं जिनके लिए सिस्टर भी हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं वो लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं और हमेशा जो है मुझे टाइमली ज्वाइन भी करते हैं, मेरे साथ जवाब भी देते हैं, सिस्टर करके बात भी करते हैं, बोलते हैं यार सिस्टर आप ऐसी हैं. बिल्कुल अच्छा लगता है ना कि अगर आपने मुझे अपना समझा है, मैं आपको अपना समझ के आपको कुछ बोल रही होती हूँ, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे होते हैं ना. तो काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे लिसनर्स हैं, फैंस हैं, और मतलब मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना. मैं नहीं आती, मेरा दिन भी अजीब गुजरता है यार. 2 घंटे मैंने क्यों नहीं आपसे बात की, क्योंकि 2 घंटे तो सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि यार ये 2 घंटे और ये ऐसे गुजर जाते हैं जैसे हमारे हैं ही नहीं. तो ऐसे ही होता है, क्योंकि सवाल मेरे पास होते हैं, सवाल का जवाब आप लोग देने में इतना टाइम लगा देते हैं. कोई सो रहा होता है, कोई नहीं उठ पाता, ये चीज़ें नहीं किया करें, टाइमली मुझे ज्वाइन कर लिया करें. और गर्मी है, बिल्कुल है, लेकिन मैं भी तो गर्मी में आके आपसे बात कर रही होती हूँ, तो आपका भी तो थोड़ा सा काम है कि आप उठ के ही मुझसे घर पे बैठे बैठे बात कर लिया करें. और इसमें कुछ नहीं जाता, किसी का भी, इवन आपका भी कुछ नहीं जाता अगर आप लोग उठ के मुझसे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बात करने के लिए ही यहाँ पर आ रही होती हूँ. तो ऐसे ही आपने भी मेरे साथ ज्वाइन रहना होता है. तो जी अभी भी कोई ड्राइविंग अगर कर रहा है, जिसने कोई सॉन्ग सुना है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसके पसंदीदा सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं अभी. लेकिन यहाँ पर एक और सॉन्ग मैंने जो है ना लगाया है कि मैं चाहती हूँ कि वो सॉन्ग भी हम लास्ट में मैं प्ले करूँ और आप और मैं वो सॉन्ग साथ में सुनेंगे. तो वो मैंने सॉन्ग रख दिया है लास्ट के लिए, ताकि लास्ट में वो सॉन्ग सुनेंगे ना हम लोग. तो कौन कौन उठ गया भाई जिसने मुझे अभी लेट सुन रहे हैं, जो मैसेज भी नहीं कर रहे कि यार मैडम डांटे ना. तो हर चीज़ है ना आपको नहीं डांटने वाली, और आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, सारे दोस्त हैं मेरे, तो मेरे साथ ही हैं आप लोग मौजूद हमेशा से. अगर आप लोग कमेंट नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं खामोशी के साथ भी, तो कोई बात नहीं जी. आपने मेरी आवाज़ को सुनना है, और सुनने के साथ जिसने अभी तक मुझे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, या आप लोगों ने मेरे पेज को शेयर नहीं किया, मुझे पता चल गया है बेटा आपने मुझे जाके शेयर करना, जाएं शेयर करें मेरे पेज को. और जो मुझे अभी सुन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी सुन रहे हैं तो आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, नींद से उठ गए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, खाना, बल्कि ये तो खाने का टाइम है, खाना भी आपने खा लिया, गुड इवनिंग भी खत्म, नहीं सॉरी गुड मॉर्निंग तो खत्म हो गई, गुड आफ्टरनून चल रहा है ना अभी. तो जी गुड आफ्टरनून का, गुड आफ्टरनून का ही आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको कोई नहीं डांट रही, बस खुशी होगी कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं. अच्छा लड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं, लड़काना याली मदद, स्मॉल सिस्टर हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, शो इज़ वेरी नाइस, सदाकत हुसैन मिरानी साहब, बचल शाह मियानी सक्कर से, कैसे हैं आप जो है सदाकत हुसैन. बहुत देर से आपने मुझे ज्वाइन किया, मैं तो सोच रही थी आप आज सबसे पहले ज्वाइन करेंगे मुझे, लेकिन आपने बहुत देर से मुझे ज्वाइन किया है. चलें ठीक है, अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन नेक्स्ट संडे आपने मुझे बहुत जल्दी टाइम से ज्वाइन कर लेना है. ओके जी. और जो सॉन्ग मुझे वो बताते हैं शहबाज जमाली, कहते हैं सॉन्ग ये है जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से जी भर गया. ओ हो इतना उदास सॉन्ग, ऐसे ना करें भाई साहब, अभी सुबह का आगाज हुआ है, अगर इतने सैड सॉन्ग अगर हमने सुनना शुरू कर दिए तो हमारा दिन ही नहीं गुजरेगा भाई. वैसे सारे के सारे यहाँ पर सैड आत्माएं बैठी हैं और मैं खुद एक सेट आत्मा बैठी हूँ आपके सामने. तो जी ऐसे ना करें, अच्छा अच्छा सॉन्ग सुने और अच्छी अच्छी बातें करें कि दिन भी अच्छा गुजरे, आपका आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरे. अल्लाह से दुआ कि आप लोग हमेशा खुश हों, ऐसी दुआ आप लोग मेरे लिए भी करते रहा करें कि मैं भी हमेशा खुश हूँ, मेरी कुछ टेंशन से हैं तो वो भी खत्म हो जाए. आप लोग प्लीज़ दुआ करिए किएगा कि मेरी कुछ टेंशन्स हैं जो मेरी अपनी हैं वो मेरी ख़त्म हो जाएं, आपकी दुआ से वो ख़त्म हो सकती हैं. तो आप लोग दिल से दुआ करिएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, टेंशन से वो ख़त्म हो जाएं, और
تو مطلب اگر میری کوئی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بھی تو خوشی ہوگی نا کہ یار آرجے سنا ہمارے ساتھ آتی ہیں تو وہ اچھے سے بات کر رہی ہیں تو وہ مطلب خوش ہیں. اگر جس دن میں خوش نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا میں خود اداس ہو کے اب آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ اس لیے پلیز آپ دعا کریے گا کہ میری کچھ ٹینشن سے وہ ختم ہو جائیں. تو میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کی ختم کر دے, دل سے کہتی ہوں. اور ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دکھ جو ہے نا ختم ہو جائیں دکھ سارے آپ کے, اور ہمیشہ آپ لوگ ہنستے مسکراتے رہیں, میرے ساتھ رہیں, میرے شو میں جوائن کرتے رہیں اور مجھے بات کرتے رہیں, سارے پرابلم شیئر کریں گے تو آپ کے ویسے ہی پرابلمس ختم ہوتے ہیں. کچھ پرابلمس ایسی جو شیئر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیں, وہ پرابلمس اللہ تعالیٰ آپ کی ختم کر دیں. تو ایسے ہی آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے بھی اور رہنا میرے ساتھ. اور یہ جو سانگ آپ مجھے بتا رہے ہیں یار بھائی بھائی پلیز پلیز سانگ آپ بھی نہ سنا کریں, اور نہ میں اگر یہ میں پہلے خود جا کر سنوں گی, دیکھتی ہوں اگر یہ اداس نہیں ہوا تو نیکسٹ سنڈے آپ کا ضرور یہ سانگ آپ کا میں پلے کروں گی, چاہے آپ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن میری کوشش ہے کہ آپ میرے ساتھ اس دن بھی موجود ہوں جس دن کی آپ کا میں سانگ پلے کروں. تو جی میں یہ سانگ پلے کروں گی اور لیکن پہلے خود سنوں گی اس کے بعد. اوکے جی, تو یہ سنڈے اگلے سنڈے بھی ہم سانگ پلے کریں گے آپ کا شہباز جمالی کا. اوکے جی, تو یہاں پر چلتے ہیں ابھی ہم کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے بالکل ٹاٹا بائے بائے کرنے والا. تو رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور یہ لاسٹ میں ایک سانگ پلے کرنے لگی ہوں اور یہ سانگ میں پلے کرتی ہوں تو اس کو سنتے ہیں ساتھ میں مل کے. اس کے بعد جو ہے نا ملیں گے ایک اگلے اتوار کو ایک نئے سوال کے ساتھ, ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. آج کا ونر آپ لوگ میرے بن چکے ہیں, جس نے بھی مجھے رائٹ آنسر دیا تھا اس کا سانگ میں نے پلے کیا, تو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ جیت جاتے ہیں میرے سیگمنٹ. تو کوئی بات نہیں, تو یہ سانگ میں نے کر دیا پلے, آئیے سن لیتے ہیں. جب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال, اللہ حافظ.

शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनानी जी नज़र नमाज अदा कई वही अवाम जो समुंड उथली पो सदर मसूद बख्शान स्पीकर बाकिर कारीबाद परडेही वजीर अब्बास राखी ए लखे मानू जनाजे में शिरकत अवाम पारा शहीद रहबर के भेटा पेश कर अलविदा चवण सिलसिलो जारी जनाजे में मुख्तलिफ मुल्क के सब का वफदन भी शिरकत कई सुभाणे तेहरान में जनाजे जो मरकजी जुलूस बरामद थींदो 7 जुलाई ते सनस मड़ तेहरान का कुम मुंतकिल कयो वेंदो करबला ए नजफ में ताजियती जुलूस बरामद कया वेंदा 9 जुलाई ते मस्जिद में मड़ मिट्टी माओ हवाले कयो वेंदो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनानी जनाजे में मान के रोंदो ऐसी ट्रंप हैरान थी पो अमरीकी न्यूज वेबसाइट मूजिब ट्रंप चो तो मां समझो हुयस त ईरान जा मानू आयतुल्लाह खुमनानी से नफरत कंदा हुआ सनस जनाजे में मान के रोंदो ऐसी हैरत थी है खुमनानी की आखिरी रस्म ईरान के हफ्ते की मोहलत दिनी है ईरान अमरीका से ठाह कर बेताब है डील लाइ मरी रो है अमरीका विंदुला के एक डी में शिकस्त दिनी ईरान के भी हारा है ईरान बीहर आबाद थे चाहे तो असा सुठा मानू आयो ईरान के अगुण सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्म हफ्ते की मोहलत दिनी है।

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद दाशनामी जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि एटमी प्रोग्राम में मंझंदि असासन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कयो। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड ऐं शिज़ा फातिमा जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा चयो त इतफ़ाक़ी राय सां कानून साज़ी कई पई वञे, वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणणी ज़रूरी आहे। आज़म नज़ीर तारड चयो त तालीमी मैदान मक़सदनि ऐं फ्रीलांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे। कंहिं हिकु कंपनी खे नवाज़ण वारे इल्ज़ामनि जूं शाहिदियूं न आहिनि मिलियूं। पीसीबी पारां वेस्ट इंडीज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइ 16 रुकनी क़ौमी टीम जो ऐलान। शाहनवाज़ दहाणी खे ॿियो ॿीहर नज़रअंदाज़ कयो वियो। लाहौर में पीसीबी जे मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद चयो त शाहन मसूद जी जाइ ते बाबर आज़म क़ौमी टीम जो कप्तान हूंदो, सबबि टीम जो हिसो न हूंदो। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फज़ल, अली उस्मान, आज़ान अवेज़ स्काउट में शामिल हूंदा। खुरम शहज़ाद, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान, मोहम्मद अवेज़, ज़फ़र बि टीम जो हिसो हूंदा।

0: कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान की 27वीं योम शहादत अज मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जियाफी आरामगाह ते तकरीब। सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल एंड सर्विसेज चीफ्स पारा खिराज अकीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल के महाज दुश्मन से विढ़ंदे शहादत मानी। दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी को एतराफ़ किया। सदर आसिफ जरदारी भेटा पेश कर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रही। पाकिस्तान जहा शहीद असा कौमी सरमायो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवण है शहीद की कुर्बानी के हमेशा कदर एतराम से याद रखो वो। कराची में अज गर्मी की शिदत में बाद जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब अज कराची की गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तई वही सके तो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड किया वो। दखण ओलह जो हवाओं 19 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हली रहा है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-583-569-0300-88569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
4: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं।
1: आगे रेडिएंट लुक रोजाना जे इस्तेमाल सा।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-801।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी।

आपको बताती हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जो कि प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। इतनी जबरदस्त क्वालिटी है इनकी कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि इन्होंने आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट तैयार किया है। हर तरह से मुराद ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको नाइट क्रीम मिल रही है, आपको फेयरनेस क्रीम मिल रही है, आपको एक्नी ट्यूब मिल रहा है, आपको सोप मिल रहा है, आपको फेस वॉश मिल रहा है, आपको लोशन मिल रहा है, आपको हेयर रिमूवल लोशन मिल रहे हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हर तरह की जो है ना इंसान की जितनी सारी बेसिक नीड होती है ना, हर तरह से आप लोगों के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर मालूम लेते हैं। अगर आप किसी भी सिटी से हमारा शो सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से ताल्लुक है आपका, तो आपने जो है ना मालूम लेनी है वहां से जाकर कि आपके यहाँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपके पास नंबर जरूरी है, जो कि आप डायल करेंगे। एक मरतबा आपने कॉल कर लेनी है या फिर मैसेज कर लेना है, और नंबर है 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-595। ही नंबर आए जैसे तुम राबतो कहे एरिया में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी अवेलेबल कराने के लिए। इन अलावा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तुम्हें थोड़ी मालूम दींदा हलूँ, तो अगर तुम इस्तेमाल करने जायो था तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी तुम्हें खबर होजे, थोड़ी ना बल्कि ज्यादा खबर होजे। अगर तुम व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हणो या फिर हणण वारा आयो तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की क्वालिटीज आन जैमें व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तुम्हारी स्किन के जो फ्रेश बनाई दिया है, तुम्हारी स्किन के फेयर बनाई दिया है। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की जो है ना खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम साबित है जनाब। ये जल्द को नरमी, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो और बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, जबकि आपकी जल्द साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल खास अज्जा आपकी जल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं। रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपने लगाना है जी व्हाइटिश ब्यूटी सोप। अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जी, और उसके अलावा अगर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। लेकिन व्हाइटिश ब्यूटी का जो फेस वॉश है ना, वो विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि भैया की स्किन को ब्राइट बनाएगा आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए है। और क्रीमी सा फेस वॉश है, जिसे आप लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, तो इस्तेमाल करेंगे और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर एक्ने बहुत ज्यादा आ चुके हैं, दाने आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा है, भाई दाने आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो आपने ये कहना है कि आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अवेलेबल है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, यानी कि जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड की गई हैं। जड़ी बूटियां जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे पर जो है ना वो एक्ने का खात्मा करती हैं। और ना सिर्फ एक्ने का खात्मा, बल्कि आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है या एक्ने किसी भी तरह का एक्ने है, एक्ने मार्क्स हैं, ब्लैक पॉट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, या फिर जितने सारे मसले हैं, अच्छा वो वाली बात है कि भाई आपके चेहरे पर अगर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई बचपन से ऐसा निशान जो कि आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब सबसे पहले है जनाब, जबरदस्त है। तो तमाम लाजमी लगाए जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब के लगाने का तरीकेकार यही आए, तो तमाम राजे टाइम इस्तेमाल करने का पहले पाँच फेस वॉश लाजमी कजो, पाँचा हथ भी चंगे तरीके से क्लीन कजो जी। अगर तुम जो प्रोडक्ट का ना स्किन लगाए तो क्लीन हथन से लगाओ, साफ सुथरन हथन से लगाओ। उनका अलावा अगर ऐसा व्हाइटिश लवली क्रीम जो जिक्र कयो, तो व्हाइटिश लवली क्रीम तुम्हारी खूबसूरती जलाया आए बाबा, ही वो प्रोडक्ट आए जो हर एक इंसान लगाए सके तो, इनमें को भी एज लिमिट कोने को। अगर तुम्हें डिठो हों तो खोड़ मानू ये चवन तो बाबा असाज टाइप वो प्रोडक्ट कोने को, तुम्हारी टाइप वो प्रोडक्ट आ सफा टाइप वो प्रोडक्ट, छो तो इन अंदर जी प्रॉपर्टीज आन वे सब उन्होंने मानून के लिए भाई कोई भी प्रोडक्ट न लगा सकता, छो तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस फार्मूला उ हूँ जी तुम हर एज में इस्तेमाल कर सोता, ही वाइटमिन से भरपूर फार्मूलो है। नंढड़ा बार हुजन, जवान हुजन, कुराड़ा हुजन, मर्द हुजन, मायू हुजन, तुम बिल्कुल व्हाइटिश लवली क्रीम के इस्तेमाल कर सोता। उन अलावा व्हाइटिश लवली क्रीम जी है इन अंदर
सनस्क्रीन भी एड थियल आहे सो बाबा मज़ा ई मज़ा अथव वाइट एश लवली क्रीम लॻायो अगरि तव्हां का जॉब कयो था तव्हां पढ़ो था या तव्हां पढ़ायो था कोई बि कमु कयो था त वाइट एश लवली क्रीम इस्तेमालु तव्हां नथा कयो त बाबा तव्हां पंहिंजी स्किन ते ज़ुल्म कयो पिया सो वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो जी अगरि तव्हां काॾे बि वञो पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ कयो त ख़ूबसूरती सां कयो ऐं पंहिंजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कयो छो त हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड आहे जेका तव्हांजी स्किन खे सिज जे असरातनि खां महफ़ूज़ रखंदी आहे सो वाइट एश लवली क्रीम तव्हांजी हर स्किन टाइप जे लाइ आहे तव्हां लॻायो ऐं ख़ूबसूरत थी वञो

मुमताज मोलाई जे गाने जी तमाम फरमाइश कई ना मुमताज मोलाई जो गानो हलायो तो उनन मानन चलाए जे के मुमताज मोलाई जे गाने जी फरमाइश कंदा है सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आ है वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो आई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ है जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ है के तमा लगाईंदा आयो आई सोना थी वेंदा आयो उन के अलावा पोस्ट के तमा लाइक एंड शेयर कंदा हलो बाबा कंजूस यो इते न कंदा कयो पंहिंजी खूबसूरती सां बि तव्हां कंजूसियूं कयो था ऐं पोस्ट सां बि कंजूसियूं कयो था ईअं किथे मज़ो ईंदो न कंदा कयो कंजूसियूं

ओके जी मोहम्मद जमान भाई, आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है, क्या ही बात करी है भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मौला अली सलाम अदद। अच्छा ऐसे नार पानी लिखते हैं, कौन बच्चे सामता ऐसे गर्मी विच मरवे सा सही गाला वैसे। अच्छा वफा मीर मुनवर हमारे साथ मौजूद हैं, छा हाल आई तवां जो, मां ठीक आया, तवां से जो प्रोग्राम बुधो पया सो मोहब्बत हुआ तवां जो। अच्छा वजाहत कहते हैं, सत्रह घर वालों ने बहुत सख्ती की है शो में जाने की, शो में जाने के लिए सख्ती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा लुबना हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, से जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। और नाइस शो, सलाम टू ऑल क्यूट फ्रेंड्स एंड मिस यू सो मच जिया, आप कहाँ चली गई हैं, प्लीज वापस आए ना, आपका नंबर भी ऑफ है कब से। अरे भाई क्या हो गया जिया को, जिया जो है ना आजकल वो एक अलग ही दुनिया में रह रही है, पता नहीं कहाँ है, अता पता ही नहीं किसी को आपसे भी गुम हो गई। अरे भाई ओके जी, इकबाल आशरी हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं, दीदार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो। अदिल खान कहते हैं आज सॉन्ग तो सुनाइएगा, असां कहें जे बिन में न ट्रिन में, ओके। और सैयद फारूक कहते हैं वैसे पैसों से ना बहुत काम हो सकते हैं, बट एक आपको बताता हूँ, पैसों से लड़कियां गोरी भी हो सकती हैं, सिर्फ लड़कियां लड़के नहीं ये ना इंसाफी है भाई, लड़के भी गोरे हो रहे हैं आजकल और आप भी हो सकते हैं जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इस्तेमाल कीजिएगा। और फहीम कहते हैं सिद्रा कल जिसके बारे में आपने कहा था ना कि उसको क्रीम भेजो, चलें ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर ये कंपनी का बंदा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं खुद ही परचेज कर लूंगा तो फिर ठीक है। अच्छा उसके अलावा हैं जी हमारे साथ जमशेद अली कहते हैं टॉपिक आंसर बिल्कुल खुशियां खरीद सकते हैं पैसों से, मेरी तो सबसे छोटी खुशी उसमें है कि मेरे पास 25 करोड़ हो तो मैं तुर्की जा सकूं, हिदायतुल्लाह हूं। अच्छा हिदायतुल्लाह हमारे साथ हैं, क्या बात है, 25 करोड़ हो तो तुर्की जाएंगे, थोड़े पैसों में भी तुर्की जा सकते हैं आप इतने पैसों में क्या वहां पर आप घर वर लेंगे, वहीं सेटल होने का इरादा है। अच्छा वैसे ये बात है, तुर्की में घर लेना ना बहुत मुश्किल काम है, तुर्की में घर लेना वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो घूम फिर कर आ जाएं बस।

हाँ जी, और यहाँ पर बात हो रही है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ना है केंची परवा बाबा तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसा सगड़ा है सो तो खूबसूरती डाटी जरूरी है। अगर ये खूबसूरत थियो बाबा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करो मोलाई मुजाहिद कहते हैं सिडो जी। टॉपिक इस दौर में पैसे से सब कुछ मिल सकता है, खुशी तो छोटी सी चीज है। फर्ज करें किसी गरीब को पैसों की जरूरत है, आप उसकी मदद करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आपके पास पैसा नहीं होगा आप परेशान रहेंगी, पैसा होगा आप खुश रहेंगी और घर वाले भी। हाँ सही गाला वैसे।

強がれ、スバッバअच्छा किशोर भाई आ चुके हैं. हेलो अदा, सॉरी हाने हाने अख खुली आ, सॉरी फॉर देयर, इट्स ओके. सनावला बिरोई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. आकाश अली हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम. आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है. मैं आकाश अली पीर जादो फ्रॉम मोरो सिटी. सॉन्ग प्ले करना अपनी पसंद का ओएसटी. ओके अच्छा चाचा खाले तुम भी लिखियो आज गानों, यानी कि तुम लिंक शेयर कर. ठीक हो गया.

मजाक कहते हैं तू यकीन जी गाल तू करी मां ॾह जे नोट के भी बार बार ॾिसंदो आहियां नकली आया एम अंसारी कहते हैं चापे पे में अच्छा कहते मेम साहब खुशियाँ पैसों से तो नहीं मिल सकती लेकिन हाँ कोई खुशी पैसों से जरूर मिल जाती है यानी तमाम भी एग्री कहो था अच्छा आदिल कहते हैं टॉपिक इस दौर में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है सही बात है पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ डायल करते रहिए 03157990595 बड़ी 315 79 595

किशोर भाई कहते हैं तो आप एक बिल्कुल कुछ खुशियां हम पैसों से खरीद सकते हैं। हाँ वैसे सही गाला है। दर्द दिल आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, चंदा जाने कैसी हैं? वेलकम टू शो। माशाल्लाह बहुत प्यारा शो तुम्हारा, तुम्हारी तरह क्या बात है। थैंक यू जाना। और वफा शहजादा तो मक्सी हमारे साथ हैं। गोट मोहम्मद सफर मक्सी लाड़काने खा तो मासा के ज्वाइन का हुआ है। लाजवाब प्रोग्राम से मोहब्बतों प्यारे भाजो। और निदली हमारे साथ है। ओहो गाना तो भलो आ है। अल्लाह जाई विधा। अरे चाचा खालिद कहते नालो बांधे छो दिल ते छो न काके जी मर्जी हुई ना असा छा तो करी सकू। निदली कहती है मैं आ गई ते छा गई। हां जी बिल्कुल यही वाला सीन है आजकल। और कहती टॉपिक क्या है अभी आपने सुन लिया होगा। और ये भाईजान कहते हैं पैसे कहां इंसान पैसे कहां इंसान टेम्पररी खुशियों खरीद कर सके थो टेम्पररी खुशियों। ओके अच्छा कहते कंजूस मानन जो शो बदूं था इन जे करे अल्लाह मारी छ अल्लाह।

वाह वाह वाह वाह, ॾाढो भलो गानो ॿुधूं था हुन सां गॾु गॾु प्रोग्राम ॿुधूं था जनाब, ॿुधूं था न बल्कि तव्हां ॿुधो था। वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां। सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हां इस्तेमालु कयो पिया वाइटेश ब्यूटी क्रीम आहे जनाब, वाइटेश लवली क्रीम आहे, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आहे, और वाइटेश सोप आहे, वाइटेश फेस वॉश आहे। उन खां अलावा जेको बि प्रोडक्ट तव्हांखे मज़े जो लॻे थो, जेको बि प्रोडक्ट तव्हां हणणु पसंदि कंदा आहियो, त उहो तव्हां परचेस कयो ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो। यकीन कंदा तव्हांखे ही प्रोडक्ट ॾाढा पसंदि ईंदा, छो त ही नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि। सो इनखे तव्हां ईज़िली इस्तेमालु करे सघो था, कोई चांस न आहे त तव्हांजी स्किन ख़राबु थींदी, उबतो तव्हांजी स्किन भली थींदी वेंदी, सुहिणी थींदी वेंदी, तव्हां सफ़ा वी आई पी थींदा वेंदा। सो लास्ट में लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थियो। अच्छा, दर्दे दिल लगती है कि ए उदास रू मुस्कुराओ कि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल। और निदड़ी कहती है समझ नहीं आ रही ये सॉन्ग कौन सी जुबान में, सारी जुबानें थी इस गाने के अंदर।

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद जे यादाश्तनामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दोज़ पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻियल पाबंदियुनि एटमी प्रोग्राम में मंजिलमंद असासन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कयो। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ ऐं शेज़ा फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेज़ा फातिमा चयो त पाक राय सां कानून साज़ी कई पई वञे, वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणणु ज़रूरी आहे। आज़म नज़ीर ताड़ चयो त तालीमी मक़सदनि ऐं फ्रीलांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे। कंहिं हिकु कंपनी खे नवाज़ण वारनि निज़ामनि जूं शायदियूं न आहिनि मिलियूं। पीसीबी पारां वेस्ट इंडीज ऐं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइ 16 रुकनी क़ौमी टीम जो ऐलान। शाहनवाज डहाणी खे हिकु भेरो ॿीहर नज़रअंदाज कयो वियो। लाहौर में पीसीबी जे मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद चयो त शान मसूद जी जाइ ते बाबर आज़म क़ौमी टीम जो कप्तान हूंदो। सऊद शकील फिटनेस वक़्त टीम जो हिसो न हूंदो। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फज़ल, अली उस्मान ऐं आज़ान अवेज़ स्काउट में शामिल हूंदा। खुरम शहज़ाद, इमाम उल हक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान, मोहम्मद अवेज़ ज़फर बि टीम जो हिसो हूंदा। कारगिल जंग जे हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वें योम शहादत अॼु मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जे आख़िरी आरामगाह ते तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं सर्विसिस चीफ्स पारां खिराज अक़ीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल जे महाज़ ते दुश्मन सां विढ़ंदे शहादत माणी। दुश्मन बि कैप्टन कर्नल शेर खान जी बहादुरी जो एतराफ़ कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो त कैप्टन कर्नल शेर खान जी लाज़वाल क़ुर्बानी हमेशह ज़िंदा रहंदी। पाकिस्तान जा शहीद असांजा क़ौमी सरमायो आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त शहीदनि जी क़ुर्बानी खे हमेशह क़दुरु ऐं एतराम सां यादि रखियो वेंदो।

0: कराची में अज गर्मी की शिदत में वाद जो इम्कान मौसमियात खाते मूजिब अज कराची की गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तई वही सके थी। महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी। दखण ओला जो हवाओं 19 किलोमीटर प्रति कलाक की रफ्तार से हली रहा है। सिंध यूनिटेड पार्टी पारा पानीकोट ए सिंध के वसीलों के फुलुट आवाम दुश्मन बजट खिलाफ मुजाहरा। नवाबशाह भानसैदाबाद मुजफ्फरपुर सेवन शिदादकोट मंजूराबाद बाडा टुल कुंडी तंगवाणी ए बिन शहरों में एहतजाज किया वह। अगवाणन सिंध हुकूमत सिंध के बजट में अरबे रुपया पंजाब कश्मीर गिलगित में खर्च कया। सिंध के वसीलों के वपार राताओं हणी रहा है। पानी तो धाड़ो हणो पे वे जै खिलाफ जदोजहद जारी रही। नारोबड़ सां जतल शख्स जो लाश तस्टड़ी थर वाले इलाके में खाहोड़ी में जतल शख्स जो लाश मिलो। पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कर लाश की सुणप न थी सकी। आज कनकोट भरसा डाटसन शाख में किरण सबब नींगर बुरी व्या। पुल टुटण सबब डाटसन हादसे का शिकार थी। बुझल नींगरन में 16 साल मुजीब ए 12 साल अब्दुल गफ्फार गोलो शामिल। गोठान पारा पैं मदद पान तहत नींगरन की गोला जारी। इंतजामिया का मदद की अपील।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88.9 पर मौजूद हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम आप लोगों का अपना जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं जरा कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनके कितने सारे फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिल रहे हैं और तभी मिलेंगे ना जब आप परचेज करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए। तो बिल्कुल जी, आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सबको वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हमने पहले आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सो नाउ बारी है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ये बातें जो है ना, जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं जिनको अगर चीजें समझ नहीं आती ना तो वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर कर दें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतनी शानदार क्रीम है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे जनाब वाह वाह वाह वाह मजू अची वो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो वाइटामिन ई बीड्स से तैयार थे लाइन के अंदर माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन भी आए आई तवाज स्किन के जो सिर्फ बिन डी हन जे इस्तेमाल में रिजल्ट दियण वो प्रोडक्ट अव।

ओके जी, सो तव्हां इहो सोचींदा ना हूंदा त ॿिनि रातिनि में कीअं रिज़ल्ट ॾींदी, त बिल्कुलु ॾींदी जनाब। हिन जे अंदरि जेके बि चीज़ूं एड थियल आहिनि एतिरे ज़बरदस्त तरीक़े वारियूं एड थियल आहिनि जो आखी ख़ूबसूरती को न इतना बढ़ा देंगी कि आखी ख़ूबसूरती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप लोगों की ख़ूबसूरती ही नहीं बल्कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स है वो भी दूर होते जाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताज़ा रखने में मदद देती है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल बाकायदा से करते हैं तो आपकी जिंदगी जो बेरोनकी है वो भी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खसूसी अज्जा आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द जो है वो कुदरती निखार आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहे और आपको जो रिजल्ट मिले वो नेचुरल मिले, तो आप लोगों ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतायज के लिए है। डी स्किन व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है जनाब, जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जल्द को जो है ना वो इस तरह से मॉइस्चराइज कर देगी कि आप खुद ही कहेंगे कि वाह वाह मजो अची वो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए जगह तुम इजीली इस्तेमाल करे सको था, ऑल स्किन टाइप जो लाया है, खास करे जो आखिरी गाल तक या बुधाई हल तो ये मेडिकेटेड क्रीम है, यानी कि डॉक्टर की निगरानी के अंदर थियल प्रोडक्ट जो फुल डॉक्टर की निगरानी के अंदर तैयार थियल है, इनमें कोई भी केमिकल एड थियल ना है। तुम्हारी स्किन में जो है सफा VIP रिजल्ट आनी दी, जैसी स्किन काफी सेंसिटिव है ना, वो भी आराम से इस्तेमाल कर सकन था। सो जनाब बिल्कुल तुम भी लगायो था, सोचो गो गड अगर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगान चाहो था तो साण तुम डी स्किन फेस वॉश भी लगानो है। आई जनाब मसीह की गाल डी स्किन फेस वॉश जो है यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है, जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह है, तुम्हारी स्किन के क्लीन कह तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी बनाई है। अगर तुम्हारी स्किन जो है तुम पानी घट पींदा हो उन वजह से तुम्हारी स्किन के जो ना काफी प्रॉब्लम्स अची वाया है। सुबह का पहली गाल तो बाबा पानी जो है वो घट न पींदा कर, पानी ज्यादा ही तुम पींदा कर, उनसा तुम्हारी स्किन के इलाही फायदो पवन है। पर अगर तुम में आदत घट आए तो पानी घट यूज करा हो तो डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कर, बिल्कुल तुम्हारी स्किन के जो ना खूबसूरती खूबसूरती मिलंदी वेंदी। सो डी स्किन फेस वॉश है जो तुम इजीली इस्तेमाल कर सको था, हर स्किन टाइप के लिए है, हर मानू इन इस्तेमाल कर सको तो। उन अलावा जी बी गाल है तो डी स्किन फेस वॉश जो है वो तुम डी में 3 दफा लगाए सको था, 3-4 दफा भी लगाए सको था, पर 4-5 दफा ना लगाए सको, छो तो तुम जो घो अगर फेस वॉश कदा पांजे चेहरे से तो तुम्हारा जो नेचुरल ऑयल है ना वो खत्म थी वो है, नेचुरल ऑयल अगर तुम्हारी स्किन का खत्म थी वो तो तुम्हारी स्किन जी वहा सफा खराब थी वी है। सो कुछ चीजों ये होंदियों जी तुम इग्नोर कदा तो तुम्हारी स्किन जो खराब थी वी है। सो बिल्कुल तुम डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल कर, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर। ओके जी, अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर्स से ना मिलन तुम्हारे एरिया में प्रोडक्ट्स ना मिलन तो कोई तुम्हें डायल करो है 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-595 ही नंबर है जिसे तुम रातो करीबी जनरल स्टोर्स से तमाम प्रोडक्ट्स जो इजीली अवेलेबल कराए सको था। सो इजीली अवेलेबल करायो जनाब, उन अलावा वठंदा हलो परचेस कंदा हलो खूबसूरत थींदा हलो। ओके जी, सो यहाँ पर जो है ना प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुनते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, आप हमें पैनल पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, कमेंट्स करते जा रहे हैं। ओके जी, तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन करते जाइए, फेसबुक वाले पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर आज कॉलिंग भी ली जा रही है तो कॉल्स ले लेते हैं और कॉलिंग अगर कॉलिंग नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें तो कॉलिंग नंबर है हमारा 03-22-13-22-88। ये हमारा कॉलिंग नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। तो आज आप लोगों की कुछ कॉल्स ले लेते हैं और देखते हैं कॉलर हमारे कॉल पर आते हैं कौन कौन से।

0: ओके जनाब, से प्रोग्राम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ना आप हमें आज कॉल करेंगे और कॉलिंग नंबर है जनाब 0332-1322-88। जल्दी जल्दी से कॉलिंग कीजिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हम कॉल्स पिक करते रहेंगे और ये वाला लिंक जो है ना आप लोगों की कॉल्स पिक होंगी। सो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ चुकी है हमारे प्रोग्राम में और देखेंगे कि फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज शायद कट गई या फिर ये बोल ही नहीं रहे थे। ओके जी, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरस से गण मौजूद
1: जी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तां बताया ठीक आयो,
1: मुबारक हो जी।
0: खैर मुबारक, बुधायो प्रोग्राम बुधो पिया
1: तां चार आज ब्लॉग थी चार
0: जी
1: चार आज मैं ब्लॉग जो मेरी भेण।
0: अच्छा, यू चोने ला तवा कॉल किया। ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-88। नेक्स्ट कॉलर दिसों के रस्से सगर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। के रस्से सगर मौजूद है, आवाज कट जियो थोड़ो वराय नालो बुदाय जो पेंजो। ओके भा, तमा ठीक आयो, प्रोग्राम बुदो पिया। अच्छा, मुखे बुधायो त तमा टॉपिक बुदो आज जी प्रोग्राम जो छा चवंदा टॉपिक ते।
1: अच्छा,
0: ओके ओके, बिल्कुल कॉल ही वठंदा तव्हां कॉल करे सघो था असांखे। असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो या फिर अॼु बसि ईअं कॉल कई अथव? चलो चलो, ओके ओके, थैंक यू। कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? जी ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भा। ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। के रस से गण मौजूद है। हेलो, अस्मा यास्मीन, इनमें यास्मीन को हमेशा आसमा बना देती हूँ, ऐसा क्यों? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं यास्मीन?
2: अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। मुझे बताएं, प्रोग्राम सुन रही थी आप यास्मीन?
2: जी हाँ, समझे।
0: अच्छा, टॉपिक के ऊपर आप क्या कहने वाली हैं? याद ही नहीं रहा। टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है? अच्छा, पैसे से व्हाइटिश और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो खरीदे जा सकते हैं, तो क्या मतलब आप खरीदेंगी या?
2: खरीदी जा सकती है, हाँ, को बताया वो खरीदेगी।
0: चले आप
2: भी, फिर मैं आपको बताऊंगी।
0: चले ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा।
2: फेस वॉश में भी इस्तेमाल करूंगी, कोशिश करती हूँ इस्तेमाल करने।
0: ओके जबरदस्त,
2: तो बहन ने मंगवाई ना, तो फिर मैं भी यूज करके देखती
0: हूं, मंगवाऊंगी। चले जबरदस्त हो गया यास्मीन, और बताएं क्या कहेंगी?
2: आवाज आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है।
0: थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया।
2: आपके कई नाम रखे हुए, मैंने कहा मिस्त्री, चीनी,
0: खंड। अॼुकल्ह मां सिंधी सिंधी जाम थी ॻाल्हायां। थैंक यू सो मच यास्मीन, तव्हां सां ॻाल्हाए इलाही सुठो लॻंदो आहे, ईअं प्रोग्राम में कॉल कंदा कयो, ऐं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी यास्मीन हमारे साथ मौजूद है, इन्हनि असांजा इलाही भला भला नाला रखिया आहिनि, सो मोहबतूं हूंदियूं आहिनि तव्हांजो। ओके, सो नेक्स्ट कॉल वठूं था, नेक्स्ट कॉलर असां सां गॾु ॾिसूं केर मौजूद आहे। कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदिल्ला खैर, तव्हां ॿुधायो कहिड़े से सगर मौजूद आहियो? ओके गुलाम रसूल भाउ, छा हाल तव्हांजो? ख़ुशि आहियो? अलहमदिल्ला, प्रोग्राम ॿुधो पिया? अच्छा, मूंखे ॿुधायो त टॉपिक ते तव्हां छा चवंदा?
1: साबिक वाजिया जो के थोरे ऐसा वाला पैसो लाजमी आ हर इंसान ही में संग पैसो को खसा कुछ भी ना है
0: यस अच्छा
1: पैसो आए तो दुनिया की हर खुशी में संग पांच पार वसा
0: अच्छा मैं यार बिल्कुल सही था चो बिल्कुल सही था चो मुखे बधायो तो जेको हेते प्रोडक्ट बुधाया थी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल कयो आ
1: मैं यो बाजी सा का उन ने बुधाया सा मैसेज में हेलो जा में ना
0: अच्छा तमा जे गोठे में न तू मिले
1: नन्ना
0: किथे ता जो गोठ केड़ो आ
1: गोठ गुलाम हसन सलाई हिंगोर जा
0: चले हिंगोर जा में अवेलेबल कराए वठना सी मोहब्बत वाइन ता जो केड़न दोसन के याद कंदा
1: दोस्त राव नजीर सलाई
0: जी जी
1: मुफसिर मुफसिर आई मजा से सलाई
0: ओके थैंक यू सो मच तव प्रोग्राम में कॉल के प्यारा भा तुम मोहबतूँ आन हिंगोर जहाँ में बिल्कुल तवाज वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराइंदी उन अलावा तुम भी कॉल कर सोता अलग किसी कॉल मुखा हथ लगी वो ड्रॉप थी वही सो माजरत कॉलिंग नंबर है 0332132228 नेक्स्ट कॉलर ऐसू के अगर मौजूद है हेलो वालेकुम असलम केर मौजूद है
1: नालो
0: अचे अच्छा टॉपिक भी चलो दोस्तन के याद कंदा
1: वालेकुम सलाम
0: केर मौजूद आ
1: कुर्बान करियो बना जन्नो मरी जा
0: ओके कुर्बान भाई साला खुश आयो
1: वाह वाला जे एहसान काम दे खुश
0: हो अल्हम्दुलिल्लाह
1: अच्छा ना काल प्रोग्राम में नंबर ना तो बिजी हो गए ताजो
0: पो भी तो लगी वेनी त रोज कॉल ता जी
1: बिल्कुल बिल्कुल लगी लगी जी लगी है गर्मी है मौसम दादी तैयारी आए
0: वाह
1: बरसात को सलाम
0: मुझे बता दो गर्मी गर्मी ना ही ताडे
1: गर्मी जाम है कुछ कुछ हवा भले भाई जुड़ा नहीं मौसम भाई
0: चलो मी वैसे अला करे ये ना
1: या बरसात वैसे मौसम का
0: सही अच्छा
1: दोस्त को करना
0: सही है दोस्तन की बिल्कुल याद क्यों पर मुके बुधाया तो प्रोग्राम जो नालो छा है
1: प्रोग्राम जो नालो सही दिल से याद है प्रोग्राम जो नालो
0: छा है
1: तानी प्रोग्राम जो दिल से याद है और प्रोग्राम जो नालो है पर स्क्रीन में याद है बिल्कुल याद है
0: याद ता है पर बुधाई तो केर याद करी छा के ना असा के बुधायो ना खबर पे ता के वाकई याद आया हमरी हवाला तहणो
1: पैनल दे मैसेज करे दिनो तो सब तारीफ लिखी गई अपन ऑडिसी होला
0: चलो चलो ठीक है थैंक यू सो मच ता प्रोग्राम में कॉल के प्यारा बात आ जो मोहब्बत हूं आए आई टाइम जे को हते थियो आ है असा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ कॉलियों दिसां थी मोटी अच्छी कुछ वठूं था या फिर कॉलिंग के ही थोड़ो खत्म करनासी हाने जिको है ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए उन वापसी जल्दी मोटी तवाने थी अचूं था तवा कडी न वंजो इते बैठा होजो मां ओही वनी ओही मोटा आई थिंक सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाई डिश एंड दिस स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय Vitish Beauty Products and Day Skin Beauty Products lagati rahi hai khoobsurat hoti rahi hai
3: GAFM 88 network Sindh ki awaaz
4: beauty ko banao perfect beauty best look beauty cream
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद
3: आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

0: साने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5769
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और

0: Control System, Mehrapur 0301-386-5453.
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

की है जिसको अल्लाह ने अच्छी आवाज अता की है, जिसको अल्लाह ने लोग उस शख्स को फनकार समझ लेते हैं। आलम यास में जब हिजर सताता है तेरा, आलम यास में जब हिजर सताता है तेरा, हम तेरे गम को भी त्यौहार समझ लेते हैं। हाले दिल उनको सुनाकर मैं सुकून पाती हूँ, और हाले दिल मैं उनको सुनाकर सुकून पाती हूँ। मेरी बातें दरो दीवार समझ लेती हैं। क्या खबर थी कि वही शख्स है जान का दुश्मन, अरे क्या खबर थी कि वही शख्स है जान का दुश्मन, जिसको हम अपना वफादार समझ बैठे थे, जिसको हम अपना वफादार समझ बैठे थे। हर्फ इनकार को इकरार समझ लेते हैं, और इकरार को इनकार समझ लेते हैं, और इनकार को इकरार समझ लेते हैं।

कितना प्यारा गाना है और उसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ। ओके तो आ चुके हैं हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जनाब जी और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद तमाम लोगों को वेलकम करते हैं और आप लोगों की मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके सो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता रहे थे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को मिल जाएगी। आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएंगे, वहां से नाम लेकर पाएंगे और इसके साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं वहां उनसे मालूम लेते हैं और आपको ये बताया जाता है कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुए अभी तक, तो उसके लिए आप नंबर के ऊपर रब्ता करते रहिए और नंबर है जनाब 03-15-799-0595। बुढ़ी 315-79-5595 तव चवंदा न भाजी सिंधी में नंबर बुधाईंदा कयो सोनन माण्हुनि जे लाइ।

19 प्रोग्राम में तमासे सगड मौजूद आयो अई हाने जेको आ सो लास्ट लिंक आहे तमा सोचा पई त तमा जो कुछ मैसेजेस रीड करी बैठा उना खा पोए तमा जी कुछ कॉल्स के पिक करी बैठू ता ठीक आ टाइम मतलब आहे सही आ थोड़ो थोड़ो मतलब इलाही आ अच्छा मीरपुर खास का अब्दुल्ला महर से सगड मौजूद आ अब्दुल्ला भा तांजो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम ता के पसंद आए चाचा खाले ता पैनल ते मैसेज कया है ठीक आहे इरम हमारे साथ मौजूद हैं इरम आपको भी वेलकम करते हैं और अंसर भाई हमारे साथ अंसर भाई तमाजो मोहब्बत आए इरम कहते हैं दिलबर दोस्त आप पता नहीं मुझे और हैं जी हमारे साथ चाचा खाले तमाम टॉपिक जो जवाब दिनो है पैसों से खुशियां तो नहीं खरीद सकते हाँ गम बेचकर अच्छा ये कैसे पॉसिबल है बताइए जरा मुझे और ही वालेकुम अस्सलाम बाजी तमाजी सुठी मिठी लाइफ किए पई गुजरे गंबट शरीफ खां अली अस सगड मौजूद है या वरी तमा जो मैसेज शायद मिसिंग पार थी वयो है जो ता जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुदो पया गंबट खां तमा सा के ज्वाइन कयो है और शोनी हमारे साथ यहां पे आपको पता है पापा जान के कहने पर आज अम्मी जान ने बिरयानी बनाई है वो भी बकरे में लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी आज हम शोनी से जाने के चलो आप खाइए एंजॉय कीजिए और साइमा मीर वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह मक्खन जैसी आज सिद्रो शक्कर वंडा रे आज कॉल क्लियर चली नो चिचमिच टॉपिक नहीं रियल खुशी पैसों से नहीं मिल सकती ओके और ये हमारे साथ है एस एस ओ खालिद आलम खान मोहम्मद खान ओके जी आपको खुश आमदीद कहते हैं एस एस ओ साहब और हमारे साथ हैं जी ज्वेलरी का खालिक लाशारी अदी प्यारी खुश आयो आखिर में शमन जो गानो हलाए जो मिठो मिठो गालाए प्ले करो यो गानो आ शायद चलो मैं कोशिश क्या तुम गानो हलाने की लास्ट में टाइम बची हो तो हलूँ था एसन अली भुगटी से सगड़ मौजूद आए हेलो अदील खान से सगर मौजूद है दर्दे दिल हमारे साथ हैं दर्दे दिल कहती है कि मेरे पास सब कोई दौलत थी चंदा बस एक दिल था वो भी तुम्हारा हुआ है मैं संभाल के रखूंगी अच्छा फजीला हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम करते हैं टॉपिक कहती है ना नहीं डियर अच्छा अहद अली अब्दुल अहद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम अहद अब्बासी दर्दे दिल कहती है टॉपिक चंदा बिल्कुल भी नहीं पैसे जरूरत है जिंदगी जीने के लिए ओके न वाकई मां हाणे कंहिंसां बि कोन ॻाल्हाईंदी आहियां हिते सॼो मथो हणी थी वञा न सो बचंदो ई न आहे मथो कंहिंसां ॻाल्हाइण जे लाइ ए मंसारी कहती हमारी कॉल लगनी नहीं तो why I am trying ये तो आप बताएं ना अहद बासी कहते हैं पैसन सा खुशियों खरीद नथियों करे सकजन ठीक है एसन कहते बोड़ी थी वही हाँ हा लगी ही तो आके फहीम कहते हैं आज मैंने भी कॉल ट्राई करी लेकिन लगी नहीं अरे कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाएगी अच्छा सुमाटू गोपाल हमारे साथ मौजूद हैं आपको भी वेलकम करती हैं आपका गाना भी है लिस्ट में हम सुनाते हैं आपको गुलाम रहीम बलूच हमारे साथ हैं जबरदस्त प्रोग्राम बहुत शुक्रिया बिलाल अली आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम राशिद कुड़ो हमें सुन रहे हैं हेलो

अच्छा बिलाल कहते हैं कि बढ़ जाती है कुछ और भी मिठास, तेरी याद मिलाकर जो पी लूं कभी चाय, आए हाय हाय। हाँ जी फकीरी लड्डू।

अच्छा, सो आप क्या कह रही हैं, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। ये बहुत ही एक प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगाया है जो कि हम सुनेंगे, और साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओगरी साजन माशी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं सजाद अली जमाली नवाब शाह से, मैं सुन रहे हैं खुश आमदीद।

0: अच्छा ए मंसारी मुखी लगो तव्हां मखण हणो पया यो चई सघां थी तव्हांखे तव्हां सुञाणो किथे आहे असांखे ओके सो हाणे कुझु कॉल्स वठूं था हाँ वाकई लगे तो वजह तां सब कंजूस थी वया हो ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 सो हिते कॉल वठूं था ही वारी कॉल ॾिसूं केर एस एस अगर मौजूद आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: केर मौजूद केर इरशाद किथां कॉल कई
1: आहे
0: ओके इरशाद ठीकु आहियो प्रोग्राम ॿुधो पिया जी जी नालो अचे थो असांजे सोणे प्रोग्राम जो कहिड़े क्रीम वठण जो इरादो कयो
1: आहे
0: ओके ओके केड़न दोस्तन के याद कंदा
1: पर दोस्त जी ना ता जो रुजान काया वदता जो सभी टीम का बदे जी मैं के सर पर सलाम
0: ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई लाइसो तो लोगो तमा स गाल है तमा इरादो कयो आ तमा लाजमी वठ जो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन या वैरायटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन सो कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-88 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम भाजी क्या हाल हाल है ठीक हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कौन हमारे साथ मौजूद है
2: मोहम्मद अजीम राजड़ी
0: ओके मोहम्मद अजीम क्या हाल है आपके ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाजी दुआ आप सुनाए
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा अजीज
2: जी हाँ भाजी प्रोग्राम तो सुनते हैं आपका
0: अच्छा नाम आ रहा है आपको मेरे प्रोग्राम का या बस सिर्फ सुनते हैं खाली लोगों की तरह
2: नाम आ रहा है भाजी
0: बताए मुझे जरा
2: व्हाइट
0: डिश ओके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप बताएं जरा इस्तेमाल करेंगे या खाली प्रोग्राम सुनेंगे
2: बाजी प्रोग्राम सुनने रहे डी स्किन अभी तक इस्तेमाल नहीं की
0: आपके एरिया में मिल रही है आपने मालूमात ली है वहाँ से
2: जी हाँ बाजी ली है वहाँ से नहीं मिल रही
0: अच्छा चलिए नंबर बताया जा रहा है प्रोग्राम के ऊपर उसके ऊपर ना आप कॉल कीजिएगा
2: ठीक है बाजी
0: कौन से दोस्तों को याद करेंगे
2: दोस्त है बाजी हमारा एक जुम्मन कलोड़ो पंजाबी
0: जी जी
2: और सब सुनने वालों को सलाम
0: थैंक यू सो मच
3: ये जो दीवाने से ये जो दीवाने से दो चार नजर आते
0: ओके जी कॉलिंग नंबर आ है 0332-1322-88 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम
0: के रस सेकंड मौजूदा
4: दुआ
0: दुआ दुआ खुशा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है प्रोग्राम बुधो पिया दुआ
4: हां बिल्कुल
0: टॉपिक ती छा चवंदी दुआ
4: सब कुछ बाबा सब कुछ पैसो आ
0: सब कुछ पैसो आई है नी माना
4: हां
0: ये जके मानू चवन था ना त पैसे सा खुशियों न खरीद करे सकदा सिनन के चो ता पांजो पैसो सा के देई छडियो असा खरीद कंदा सी खुशियों बाबा पैसन सा अच्छा दुआ बुधायो केडो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया
4: सारी लाइक
0: व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम
4: हां
0: केतरा डी ध्यान लगाई थव हां
4: कदे कदे लगाई
0: है इसलिए ई छू बाबा रोज लगाई रोज लगाई ना कयो केडन दोस्तन के याद कनो
4: 15 दिन भी थी एनिवर्सरी
0: है अच्छा चलो ठीक है कदे कदे ना रोज लगाया जे भलो भलो रिजल्ट मिले वे
4: गर्मी भी ताए ना
0: पोछा पखो वाला सुमी पो क्रीम नी हमारी प्यारी दुआ मर्शद मौजूद दुश्मन के सलाम डई बनी वही छोकरी ओके सो हिकड़ी वठूं कॉल या वरी हिकड़ी वठूं ता ओके सो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो
5: हेलो
0: हेलो वालेकुम
5: अस्सलाम
0: केर मौजूदा
5: अमजद
0: अली सुमरो किथां कॉल कया
5: जी
0: किथां कॉल कया
5: पाला बर रगा
0: ओके प्रोग्राम बुधो पिया
1: जी जी
0: चलो मुखे बुधायो नालो अचे तो प्रोग्राम जो
1: जी जी
0: अच्छा मुखे बुधायो त केडन दोस्तन के याद कंदा
1: जी
0: केडन दोस्तन के याद कंदा
1: बस हेलो सा सुमरो शामिल सुमरो
0: जी
1: बुधायो
0: त ओके थैंक यू सो मच अदो सिर्फ जी जी करे पयो ओके सो बस हाणे हिते तव्हां कॉलर थोरो रेस्ट कयो ऐं असां वटि वक़्तु जेको आहे उहो बि ख़तमु थियण वारो आहे असां हिकु ॾींहुं छॾे करे ॿिए ॾींहुं तव्हांजी कॉलियूं वठंदा आहियूं यानी अॼु वरितियूं त सुभाणे छॾे वरी ॿिए ॾींहुं असां कॉलियूं वठंदासीं प्रोग्राम आहे जना वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो अवां ताईं पहुचाए वञे थो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावनि सां सो
5: दिल की ख़ामोशियों
0: ओके जी अमीन अली हमारे साथ मौजूद है हेलो
5: मेरी हर धड़कन का तू जुनून
0: अच्छा बिलाल कहते हैं एक वक्त एड़ो भी हो जो असी कहलाए हर पल फर्ज हुआ सी वो आहिस्ते आहिस्ते विसरंदा वया सी बगैर कहे सबब जे बेकार थींदा वया सी आए हाय

अच्छा निदड़ी कहती है टॉपिक, हाँ ये सच है, पैसों से खुशी मिल सकती है क्योंकि ये वो दुनिया है, पैसों के लिए खून के रिश्ते भी बदले जाते हैं, तो पैसों से खुशी सब कुछ मिल सकती है, पैसा नहीं तो शायद आप भी नहीं, यह हकीकत है शायद कड़वो सच असांजे समाज जो। ओके सो वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी थिए थी जनाब 5 बजे वारे प्रोग्राम में, 5 बजे खां वठी 5 बजे खां वठी जेको आहे सो 6 बजे ताईं मां तव्हां सां गॾु हूंदमि। ऐं हाणे असांजे वञण जो वक़्तु जेको आहे न थी वियो आहे, सो नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूं था, पंहिंजो ओहिड़ो सॼो ख़्यालु रखंदमि। किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, जा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो पंहिंजो ओहिड़ो सॼो ख़्यालु रखंदा, मोकिलाणी नाहे बाबू सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: तुम एक मामूली सी लड़की को हमारे घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकते हो?
1: मामूली लड़की नहीं हो।
2: मैं रब से हाँ, मैं रब से हाँ।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: तेराना जी मस्जिद में रखल अवाम पारा अलविदा जो सिलसिलो जारी। शहीद रब रखे अलविदा चवण लाए हजारन की तादाद में शहरी तहरान पहुतल। खेस भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की जनाज़े नमाज़ अॼु अदा कई वेंदी। 1 करोड़ माण्हुनि जी शिरकत थियण जो इम्कान। सूमर जे ॾींहुं 6 जुलाई ते तहरान में मरकज़ी ताज़ियती इजतमा थींदो। मड़ 9 जुलाई ते मशहद में मिटीअ मां हवाले कयो वेंदो।
5: The hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
4: Khamenei ji aakhri rasman la Iran ke hafte ji mohlat dini aaye. Iran America sa tha karan la betab aaye ae deal la pan mari rahyo aaye. अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीका ईरान जे अॻूणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ ॻाल्हियुनि खे रोकियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे 1 ॾींहं में शिकस्त ॾिनी। ईरान खे बि हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियण चाहे थो। असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे।

अमेरिका विच में गालन जो बियो दौर पाकिस्तान में थींदो अरब मीडिया जी दावा ईरान ए अमेरिका विच में गालन जो बियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो ईरान ते लगल पाबंदिन एटमी प्रोग्राम ए मंजमंद असासन बाबत गालियो थींदियूं ईरानी वफद जो फैसलो शहीद सुप्रीम लीडर जे तदफीन बाद ही थींदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाए 0300 583 569 0300 583 569।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-5-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-83-47।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जनाजे में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सभ खां वधीक वफ़दनि बि शिरकत कई। सुभाणे तेहरान में जनाज़े जो मर्कज़ी जुलूस बरामद थींदो। 7 जुलाई ते संदसि मड़ तेहरान खां कुम मुंतकिल कयो वेंदो। करबला ऐं नजफ़ में ताज़ियती जुलूस बरामद कया वेंदा। 9 जुलाई ते मस्जिद में मड़ मिटी माओ हवाले कयो वेंदो।

शहीद सुप्रीम लीडर अतुला खमदा के जनाजे में मान के रोंदो ऋषि ट्रंप हैरान थी वयो अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मौजूद ट्रंप चो तो समझदो आया समझदो यस ईरान जा मानू अतुला खमदा से नफरत कंदा हुआ असन जनाजे में मान के रोंदो ऋषि हैरत थी आ है खमदा जी आखिरी रस्म ला ईरान के हफ्ते की मोहलत दिनी है ईरान अमेरिका से करण ला बेताब है डील ला मरी रहा है अमेरिका वेंजुला के एक दिन में शिकस्त दिनी ईरान के हारा है ईरान बीहर आबाद थे चाहे तो असा सुठा मानू आयो ईरान के अगुणी सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्म ला हफ्ते की मोहलत दिनी है ईरान अमेरिका विच में इस्लामाबाद के यादाशनामे की गाल दौर पाकिस्तान में थन्द अरब मीडिया की दावा अल अरबिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान अमेरिका विच में गाल दौर 11 जुलाई से इस्लामाबाद में थन्द ईरान से लगल पाबंदन एटमी प्रोग्राम ए मनजमंद असासन बाबत गाल ईरानी वफद जो फैसलो शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन बाद थन्द आसान दुनिया के सब का वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त की घुर्ज है वफाकी वजीर आजम नजीर तर्ड और शिजा फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शिजा फातिमा तफाक राय से कानून साजी कई पी वे वक्त से गड निजाम में बेहतरी आनी जरूरी है आजम नजीर तारड तारीमी मकसद ए फ्रीलांसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी जरूरी है कें एक कंपनी के नवाजन वो इल्जाम जो शाहदी ना मिल पंज जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरियत जो कारो डी है इन डी अवाम की मेरिट आइन पार्लियामेंटी जमहूरियत के रथाऊ हयों व्यू बिलावल भुट्टो सरदारी पैं पैगाम में अमृत समझो तो आवाम जो आवाज दबाया वो पर शहीद बेनजीर ए केतन ही काकुन की कुर्बानी साबित किया तो अवामी हाकमियत करें भी शिकस नी दई सकते 5 जुलाई असं आइन की बालादस्ती जमहूरियत के तहफुज अजम की याद दियारे थी अवाम ने चूंडियल वजीर आजम शेख जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत से मार्शला मणी वही शहजीना मेमन चो तो गैर जमहूरी अमल सियासत मुआशत ए कौमी तरक्की से घेरा नाकार असर विधा शहीद भुट्टो ए शहीद रानी जमहूरी आइन अवामी हकन ला तारीखी जदोजहद कई पीपी आइन जमहूरियत ए अवामी हकन के अलमबरदार है पीसीबी पारा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाए 16 रुकनी कौमी टीम जो ऐलान शाहनवाज दहानी के एक भेरों बीहर नजरअंदाज कर लाहौर में चो तो शान मसूद की जाय से बाबर आजम कौमी टीम जो कप्तान हों सऊद शकील फिटनेस सबब टीम जो हिस्सों न हों आमिर जमाल अब्दुल्ला फजल अली उस्मान अजान अवेस स्काउट में शामिल हों खुरम शहजाद इमामुल हक मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली मोहम्मद रिजवान मोहम्मद अवेस जफर भी टीम जो हिस्सों होंदा

कारगिल जंग जे हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योमी शहादत अज मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जाखी आरामगाह ते तकरीब, सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल एंड सर्विसेज चीफ्स पारां खिराज अकीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल जे महाज ते दुश्मन सां विढ़ंदे शहादत माणी। दुश्मन बि कैप्टन कर्नल शेर खान जी बहादुरी जो एतराफ़ कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो त कैप्टन कर्नल शेर खान जी लाजवाब कुर्बानी हमेशह ज़िंदा रहंदी। पाकिस्तान जा शहीद असांजा क़ौमी सरमायो आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चवणा त शहीदनि जी कुर्बानी खे हमेशह क़दुरु ऐं एतराम सां यादि रखियो वेंदो।

0: कराची में अज गर्मी की शिदत में वाजिब इम्कान मौसमियात खाते मौजूद अज कराची की गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वही सके तो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वी दखण ओलह जो हवाओं 29 किलोमीटर प्रति कलाक की रफ्तार से हली रही है। एसीपी पारा पानी कोट ए सिंध वसीलों के फुलट अवाम दुश्मन बजट खिलाफ मुजाहरा हैदराबाद सखर लाड़कानो नवाबशाह भान सिदाबाद मौशरफ रोज सेवन शिदादकोट मंजूराबाद बाडा ठुल कुंदी तंगवाणी ए बेन शहरों में एहतजाजी मुजाहरा अगवाणों का चवणा है तो सिंध हुकूमत सिंध के बजट में अरबे रुपया पंजाब कश्मीर गिलगित में खर्च कया सिंध के वसीलों से वफाक वराथों हणी रो है पानी से धाड़ो हाँ पे वे जैं खिलाफ जदोजहद जारी रही धाड़ो हाँ पे वे जैं खिलाफ जदोजहद जारी रही। मिठियाणी पुलिस नंढी उम्र की शादी की कूड़े इतला यतीम नारी की शादी रोकाये छी घोट कूड़े जा भाण में यतीम नारी कलसुम सोलंगी की शादी तकरीब से पुलिस कड़की पई मिठियाणी पुलिस कुमार घोट ए मौलवी के थाने से खड़ी आई शादी की तकरीब मायूसी में तब्दील घोट अब्दुल गफूर चवण है तो पुलिस मुझे मुखालफन के कूड़े इतला तजलील नाइंसाफी कई है नारी की माओ चवण है तो मुझी भाण ज धीए जो संग न डे पुलिस की मदद से मूसा जुठ कई है। कंदकोट बरसन डाटसन शाख में किरण सब नीगर बुढ़ी व्या पुल टुटन सब डाटसन हादसे का शिकार थी वही बुढ़ी व्यल नीगर में 16 साल मुजीब ए 12 साल अब्दुल गफार गोलो शामिल गुठान पारा पैं पान तहत नीगर की गोला जारी इंतजामिया का मदद की अपील।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की नाज़िमात अदा कई वही, अवाम जो समुंड उथली पो। सदर मसूद पख्शान, स्पीकर बाकिर का लिबाद पढ़े, वजीर अब्बास इराकची, लखे मानू की जनाजे में शिरकत, अवाम पारा शहीद रहबर के भेटा पेश कर अलविदा चवण सिलसिलो जारी। जनाजे में मुख्तलिफ मुल्क के सब का वफदन भी शिरकत थी। सुभाणे तेहरान में जनाजे जो मरकजी जुलूस बरामद थन्दो। 7 जुलाई ते रस्म तेहरान का कुम मुंतकिल किया वेंदो। करबला ए नजब में ताजियती जुलूस बरामद किया वेंदा। 9 जुलाई ते भी मस्जिद में मड़ मिट्टी माओ हवाले किया वेंदो।

शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जनाज़े में माउंट गेरोंदो रिसीव ट्रंप हैरान थी वयो अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट मौजूद ट्रंप चयो तो मां समझ तो होयस ईरान जा मानू आयतुल्लाह खमेनी सां नफरत कंदा हुआ संदस जनाज़े में माउंट गेरोंदो रिसीव हैरत थी आहे खमेनी जी आखिरी रस्मन लाइ ईरान के हफ्ते की मोहलत दिनी है ईरान अमेरिका से ठाकर करण लाइ बेताब है डील लाइ मरी रो है अमेरिका विंदुरा के एक डी में शिकस्त दिनी ईरान के हारा है ईरान बीहर आबाद थे चाहे तो असा सुठा मानू आयो ईरान के अगुणे सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मन लाइ हफ्ते की मोहलत दिनी है ईरान ए अमरीका विच में इस्लामाबाद के यादाशनामे की गाल दौर पाकिस्तान में अरब मीडिया की दावा अल अरबिया की रिपोर्ट मूजिब ईरान ए अमरीका विच में गाल दौर 11 जुलाई इस्लामाबाद में ईरान से लगल पाबंदन एटमी प्रोग्राम ए मंजमद असासन बाबत गाल ईरानी वफा जो फैसलो शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन बाद असा दुनिया जो सब का वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त की घुर्ज है वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ और शिजा फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शिजा फातिमा चाहते तफाकी राय से कानून साजी कई पी वे वक्त से गड इंतजाम में बेहतरी आने जरूरी है आजम नजीर तारड़ तालीमी मकसद ए फ्रीलांसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी जरूरी है कें एक कंपनी के नवाजन वाले निजाम जो शाहिदू ना मिल पंजी जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी जो कारो ढीं है अवाम की मेजिट आयन ए पार्लियामेंट की जमहूरियत से रथाऊ आय बिलावल भुट्टो जरदारी पैगाम में आमरियत समझो तो अवाम जो आवाज दबाया वो पर शहीद बेनजीर ए केतन कारकुनों की कुर्बानी साबित कर अवामी हाकमियत के कदें भी शिकस्त नी दई सकते 5 जुलाई असा के आयन की बालादस्ती जमहूरियत के तहफुज अजम की याद दियारे थी अवाम की चूंडियल वजीर अजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत से माशला मड़ी वही शर्जिलना मेमुन चो तो गैर जमहूरी अमल सियासत मुआशरे ए कौमी तरक्की से गहरा नाकारी असर विधा शहीद भुट्टो ए शहीद राणी जमहूरी आयनी अवामी हकन लाइ तारीखी जदोजहद कई पीपी आयन जमहूरियत अवामी हकन की अलमबरदार है पीसीबी पारा वेस्ट इंडीज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइ 16 रुकनी कमी टीम जो ऐलान शाहनवाज रहाणी के एक भेर बीहर नजरअंदाज कर पे लाहौर में पीसीबी के मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद चो तो शाहन मसूद की जाए ते बाबर आजम कौमी टीम जो कप्तान हों सोद शकील फिटनेस सबब टीम जो हिस्सो न हों आमिर जमाल अब्दुल्ला फजल अली उस्मान ए आजान अवेस स्काउट में शामिल हों खुरम शहजाद इमामुल हक मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली मोहम्मद रिजवान मोहम्मद अवेस जफर भी टीम जो हिस्सो होंदा

0: कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं योम शहादत आज मल्हाया पे वे सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद आखिरी आरामगाह से तकरीब सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल एंड सर्विसेज चीफ्स पारा खिराज अकीदत पेश कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल के महाज के दुश्मन से लड़ंदे शहादत माणी दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी को एतराफ़ किया सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो तो कैप्टन कर्नल शेर खान की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहंदी पाकिस्तान जा शहीद असांजा कौमी सरमायो आहिन वजीर आजम शहबाज शरीफ चवण आहे तो शहीदन की कुर्बानी की हमेशा कदर ए एतराम से याद रखियो वेंदो कराची में अज गर्मी की शिदत में वाद जो इम्कान मौसमियात खाते मूजिब अज कराची की गर्मी पद 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक वही सके तो महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी दक्षिण ओलह जो हवाओं 19 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हली रहा कुंडी में जहरीलो खाधो खाने सबब बेहोश थियल पीरसन फौज फौतन जो अंग टे फौतल बिन भाइरन नानो 60 साल असगर आरइंब हैदराबाद अस्पताल में फौत गुजरियल ढी जहरीलो खाधो खाने सबब भाइर मौके से फौत थी हुआ एसयूपी पारा पानी खोट एसएनजे वसीलन की फुरलुट अवाम दुश्मन बजट खिलाफ मुजाहरा हैदराबाद सखर लाड़कानो नवाब शाह भान सैदाबाद नौशर फिरोज सेवन शिदादकोट मंसूराबाद बादार थुलकुंडी तंगवाणी बेन शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरा अगवाणों का चवण है सिंध हुकूमत सिंध के बजट में अरबे रुपया पंजाब कश्मीर ए गिलगित में खर्च किया सिंध के वसीलन के वफाक रेथाओं आने रो है पानी से वाड़ो हयो पे वे जैसे खिलाफ जदोजहद जारी रही विछाणी पुलिस नंढी उम्र की शादी कूड़े इतला यतीम नारी कलसुम सोलंगी की शादी तकरीब से पुलिस कड़की पई विछाणी पुलिस कुमार घोट ए मौलवी के थाने से खड़ी आई शादी जो तकरीबों मायूसी में तब्दील घोट अब्दुल गफूर चवण है तो पुलिस मुझे मुखालफन की कूड़े इतला से तजलील नाइंसाफी कई है नारी के माओ जो चवण है तो मुझी भाण के धीए जो संग न डेण से पुलिस की मदद से मूसा जुठ कई है कनकोट भरसा डाटसन शाक में किरण सबब निंगर बुढ़ी व्या पुल टुटन सबब डाटसन हादसे का शिकार बुढ़े की वेल निंगरन में 16 साल मुजीब ए 12 साल अब्दुल गफार गोलो शामिल गोठान पारा पी मदद पान तहत निंगरन की गोला जारी इंतजामिया का मदद की अपील
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-180-003
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजे खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियणु वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आयतुल्लाह खामनेई जी जनाजे में माण्हुनि खे रोअंदे ॾिसी ट्रम्प हैरान थी वियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पहुची ट्रम्प चयो त मां समझंदो हुयुसि ईरान जा माण्हू आयतुल्लाह खामनेई सां नफ़रत कंदा हुआ। संदसि जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे। खामनेई जे आख़िरी रस्मनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरी रहियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे हिकु ॾींहं में शिकस्त ॾिनी, ईरान खे बि हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियण चाहे थो। असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जी आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद यादाश्त नामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा, अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि, एटमी प्रोग्राम ऐं मुंजमद असासन बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तस्कीन बाद थींदो। असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कयो। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। वफ़ाकी वज़ीर आज़म नसीर तारड ऐं शिज़ा फातिमा जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा चयो त इतफ़ाक़ राय सां कानून साज़ी कई पई वञे, वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणणु ज़रूरी आहे। आज़म नसीर तारड चयो त तालीमी मक़सदनि ऐं फ्री लांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे, जंहिंखे कंहिं हिकु कंपनी खे नवाज़ण वारनि इल्ज़ामनि जूं शायदियूं न आहिनि। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान जी जमहूरियत जो कारो ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते अवाम जे मैंडेट आइन ऐं पार्लियामानी जमहूरियत ते दातावो खयो वियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो त आमरियत समझो त अवाम जो आवाज़ दॿायो वेंदो, पर शहीद बेनज़ीर ऐं केतनि ई कारकुननि जी कुर्बानीअ साबित कयो त अवामी हाकमियत खे कॾहिं बि शिकस्त नथी ॾेई सघजे। 5 जुलाई असांखे आइन जी बालादस्ती ऐं जमहूरियत जे तहफ़ जे अज़म जी यादि ॾियारे थो। अवाम जी चूंडियल वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत ते माशाला मड़ी वई। शजीरी नामे मण चयो त गैर जमहूरी अमल सियासत माशरे ऐं क़ौमी तरक़ी ते गहरा नाकारी असर विधा। पीसीबी पारां वेस्ट इंडीज ऐं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइ 16 रुकनी क़ौमी टीम जो ऐलान। शाहनवाज डाणी खे हिकु भेरो ॿीहर नज़रअंदाज कयो वियो। लाहौर में पीसीबी जे मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद चयो त शान मसूद जी जाइ ते बाबर आज़म क़ौमी टीम जो कप्तान हूंदो। सऊद शकील फिटनेस सबब टीम जो हिसो न हूंदो। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फज़ल, अली उस्मान ऐं अज़ान अवेस स्क्वाड में शामिल हूंदा। खुरम शहज़ाद, इमाम उलक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिज़वान, मोहम्मद अवेस ज़फ़र भी टीम जो हिसो हूंदा। कारगिल जंग जे हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वें योम शहादत अॼु मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जी आख़िरी आरामगाह ते तकरीब। सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल ऐं सर्विसिस चीफ पारां ख़राज अक़ीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल जे माज़ ते दुश्मन सां विढ़ंदे शहादत माणी। दुश्मन बि कैप्टन कर्नल शेर खान जी बहादुरीअ जो एतराफ़ कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो आहे त कैप्टन कर्नल शेर खान जी लाज़वाल क़ुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहंदी। पाकिस्तान जा शहीद असांजा क़ौमी सरमायो आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त शहीदनि जी क़ुर्बानीनि खे हमेशा क़दुरु ऐं एतराम सां यादि रखियो वेंदो। कराची में अॼु गर्मी जी शिदत में वाध जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब अॼु कराची जी गर्मी पद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। महसूस 38 डिग्री सेंटीग्रेड कई वेंदी। ॾखण ओलह जूं हवाऊं 19 किलोमीटर/कलाक जी रफ़्तार सां हली रहियूं आहिनि। कुनरी में ज़हरीलो खाधो खाइण सबब बेहोश थियल पीरसन फोत। फोतियुनि जो अंगु टे थी वियो। फोत थियल ॿिनि भाइरनि जो नानो 60 वरियनि जो असर आराई बि हैदराबाद जी इस्पताल में फोत थी वियो। गुज़िरियल ॾींहुं ज़हरीलो खाधो खाइण सबब 2 भाइर मौके ते फोत थी विया हुआ।

सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां पाणीकोट ऐं सिंध जे वसीलनि जी पुलुट ऐं अवाम दुश्मन बजट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। हैदराबाद, सकर, लाड़काणो, नवाबशाह, भान, सईदाबाद, नौशहरो फिरोज, सेवण, शिरादकोट, मंसूराबाद, पाटड़, ठुल, कुंडी, तंगवाणी ऐं ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी मुज़ाहिरा। अॻवाणनि जो चवण आहे त सिंध हुकूमत सिंध जी बजट मां अरबे रूपया पंजाब, कश्मीर ऐं गिलगित में ख़र्च कया आहिनि। सिंध जे वसीलनि ते वफ़ाक राताहो हणी रहियो आहे, पाणीअ ते बि धाड़ो हयो पियो वञे, जंहिं ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रहंदी। मिठाणी पुलिस नंढी उमिरि जी शादी जे कूड़े इतलाह ते यतीम नारीअ जी शादी रोकराए छॾी। घोट कूड़े जा बाण में यतीम नारी कुलसूम सोलंगी जी शादी तकरीब ते पुलिस कड़की पई। मिठाणी पुलिस कुंवार घोट ऐं मौलवी खे थाणे ते खणी आई। शादी जूं तकरीबूं मायूसी में तब्दील। घोट अब्दुल गफूर जो चवण आहे त पुलिस मुंहिंजे मुखालफ़नि जी कूड़ी इतलाह ते तज़लील ऐं नाइंसाफ़ी कई आहे। नारी जे भाउ जो चवण आहे त मुंहिंजे भाणे धीउ जो संग न ॾियण ते पुलिस जी मदद सां मूं सां जुठ कई आहे।

0: ऐं कंदकोट भरिसां डाटसन शाख में किरण सबब ब नीगर बुडी विया। पुल टुटण सबब डाटसन हादसे जो शिकार थी। बुडी वियल नीगरनि में 16 वरियनि जो मुजीब ऐं 12 वरियनि जो अब्दुल गफ्फार गोलू शामिल। बोटाणनि पारां पंहिंजी मदद तहत पाण नीगरनि जी ॻोल्हा जारी। इंतज़ामिया खां मदद जी अपील।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: खुश जी वाही तो जहान वाही, सेहत वाही तो सब कुछ आही। प्रोग्राम सेहत की गाल में असांजे स्टूडियो में मौजूद हुंदा आहिनि सिंध जा मशहूर व मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहब कराची, इस्लामाबाद ऐं नवाबशाह जा मशहूर व मारूफ डॉक्टर आहिनि। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोरडी कबीर रोड मेहरापुर में अॼुकल्ह मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। जर्मन जेकी जर्मनी मुल्क आहे, जर्मनी जी फ्रेंचाइज़ आहे डॉक्टर साहिब जी, जेकी कराची में बि आहे, हैदराबाद में बि आहे, ऐं असांजे मेहरापुर शहर में डॉक्टर साहिब जे तावन सां हिते खोली वई। जो डॉक्टर साहिब असुल हितां जे आवाम ते इहा हिकिड़ी स्पेशल महिरबानी कई, अवेयरनेस मैसेजिस ऐं बीमा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण पहुचाइण जे सिलसिले में डॉक्टर साहिब एफ एम रेडियो ते अची करे या हिते 2021 में अची करे जेका क्लिनिक खोल रही हुनजो आगाज़ कयो। छो जो डॉक्टर साहिब जो चवणु आहे का बि बीमारी लाइलाज न आहे, ऐं यकीन ईअं ई आहे, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अल्लाह ताला जी आहे। काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके मुख़्तलिफ़ ऐं वॾनि वॾनि इस्पतालनि मां, वॾनि वॾनि हॉस्पिटल्स मां लाइलाज थी करे आया ऐं डॉक्टर साहिब वटि आया, अल्लाह ताला जे हुकुम सां अलहमदिल्ला उहे शिफ़ा याब थिया ऐं अॼु उहे तमामु घणो ख़ुशि आहिनि ऐं अॼु बि डॉक्टर साहिब खे दुआऊं ॾींदा रहंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन आहिनि, 30 सालनि खां वधीक डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे। अव्हांखे अगरि गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाले जी पथरी आहे, पाइल्स आहिनि, गले जा गुदूद आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत न आहे। उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। केॾो बि पुराणो अव्हांखे जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फाल जी खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंगु सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, या जिन औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जंहिंजो वज़न वधी वञे थो, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-2196-851 ते तव्हां कॉल करे सघो था, कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। दोस्तनि खे असीं चवंदा आहियूं त अवीं ज़्यादा खां ज़्यादा प्रोग्राम में कॉल्स करे डॉक्टर साहिब खां कंहिं बि बीमारी बाबति मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था, डॉक्टर साहिबु अव्हांखे मालूमात ॾींदो। त सभ खां पहिरियां असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदा। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे,
2: अलाह ताला जा करुणा एहसान
1: आहे। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु। कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा ॾींहं जेके तव्हां हिते वेहंदा आहियो उहे बि ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा, जीअं असांजा मौज़ू ॿुधंदड़ जेको आहे सो माना आसानी सां सम्झी
2: सघनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन पाकचूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असां प्रोग्राम सची ॻाल्हि बर वक़्तनि टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हर उहा ॼाण जेके असांजा घर वेठे मौज़ीन लिसनर्स आहिनि ऐं दोस्त आहिनि या पेशंट हज़रात आहिनि ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि ताईं पहुचाए सघूं। जे लास्ट टाइम जेको आहे सो हिकिड़े ग़िज़ा जे हवाले सां प्रोग्राम कयोसीं, उन्हनि खे तमामु घणो सभिनी साराहियो आहे। मैसेजिस में बि इहा ई जेको आहे सो रिक्वेस्ट कई त आईंदा बि असांखे कुझु अहिड़े ई जेको आहे सो ग़िज़ाउनि जे बारे में जेकी ॼाण जेकी असां बीमारियुनि जे हवाले सां जेके जेके टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां या जेको देसी ॾसनि जे हवाले सां उहे बि इहे प्रोग्राम असांजो मशहूरु हूंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक हिन हवाले सां जेकी हर मर्ज़ जे हवाले सां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अमराज़ अव्हांखे ख़बर आहे त नक कन गले जो गदूद वधी वेंदो आहे या जेको आहे सो किडनी स्टोन हूंदो आहे या पिते जी पथरी या जेको आहे सो मैदे जी तेज़ाबियत या मैदे जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या जोड़नि जो सूरु या कुनरग जी जेको आहे सो सूरु हूंदो आहे आहे कुंडरग जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन हवाले सां या गर्दन जा जेके मोहरा जेको आहे सो यानी कमु न कंदा आहिनि या जेको आहे सो कमर दर्द हूंदो आहे या ज़नाना मर्दाना मसाला हूंदा आहिनि UTI इन्फेक्शन हूंदो आहे बवासीर जो मसइलो हूंदो आहे त इन हवाले सां असां वटि होम्योपैथिक जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में साम्हूं वधण पोट आहे पेट्रोल पंप कोचड़ी रोड ते सुबुह जो टाइमिंग 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं अहिड़े तरीक़े सां हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो छंछरु आचरु सूमर अरबा ख़मीस मौजूदु हूंदा आहियूं अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे जेको जुमे जो ॾींहुं छंछरु जो ॾींहुं ऐं आचरु जो ॾींहुं हूंदो आहे बाक़ी दवाऊं अव्हां खे वठणियूं हूंदियूं आहिनि अहिड़े तरीक़े सां मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त सो कहिड़े बि मर्ज़ में जेको आहे सो हिकु त इलाजु कराइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे हीअ जेके अव्हांखे असां 10-15 ॾींदा आहियूं इहे बिल्कुलु जेको आहे तमामु बहितरीन आहिनि एज़ अ फस्ट एड तौर ते या जेको आहे सो फ़िलहालु जेको वक़्ती तौर ते अव्हांखे बिल्कुलु हेल्प कंदा आहिनि ऐं हूअं बि इहे क़ुदिरती शयूं जेको आहे सो असांखे खाइणु घुरिजनि छो जो क़ुदिरती शयुनि सां जेको उन्हनि में को बि केमिकल वग़ैरह इन्हनि खे माण्हू न ठहींदा आहिनि इन खे अलाह ताला तख़लीक़ कयो आहे ऐं जेके ॿी क़िस्म जूं अहिड़ियूं केमिकल्स वारियूं दवाऊं हूंदियूं उन्हनि में केमिकल्स हूंदो आहे इन जे करे कोशिशि कंदा कयो त क़ुदिरती शयूं जेके ऐं हिन मौसम में जेकी हर मौसम में अलॻि अलॻि फ्रूट ईंदो आहे ऐं हर जेको आहे सो फ्रूट जो हर भाॼीअ जो अलॻि अलॻि जेको आहे सो फ़ाइदो हूंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां जीअं अॼुकल्ह गर्मी आहे ऐं गर्मी में जीअं मां लास्ट टाइम तव्हांखे खोड़सारी शयुनि जे बारे में ॿुधायो फार्मन वग़ैरह जे बारे में अहिड़े तरीक़े सां हींअर बि अव्हां वटि ॾिसो खीरो वंगो जेको आहे सो तमामु घणो जेको आहे सो वाफ़र मक़दार में मौजूदु आहे खीरो वंगो तमामु हिकिड़ो बहितरीन छो जो इन इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी जेको आहे सो जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त जेके बि तव्हां ॾिसंदव त जेके ब्यूटिशनस हूंदा आहिनि या जेके ब्यूटी पार्लर्स में जेके फेशियल वग़ैरह हूंदा आहिनि जेके असांजी अदड़ियूं वग़ैरह इहे ॿुधनि थियूं ॾिसनि थियूं त उन्हनि खे ज़रूरु ख़बर हूंदियूं त उन्हनि शयुनि में कुकम्बर जंहिंखे असां खीरो चवंदा आहियूं कुकम्बर जेको आहे सो फ्लेवर मौजूदु हूंदो आहे उहो चमड़ीअ जे लाइ जेको आहे सो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे जेके बि अखियुनि जे हेठां हल्का थी वेंदा आहिनि या चहिरे ते छायूं थी वेंदियूं आहिनि दाग थी वेंदा आहिनि इवन मोहिड़ा थी वेंदा आहिनि या चमड़ी में पट थी वेंदी आहे खुश्की थी वेंदी आहे त उन जे लाइ जेको आहे सो खीरो वंगो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे सिर्फ़ु चमड़ी जी बीमारियुनि जे लाइ न बल्कि हुन में 90% जेको आहे सो पाणी पियल हूंदो आहे 90% पाणी पियल हूंदो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿिया अज़ा शामिलु हूंदा आहिनि ऐं क़ुदिरती तौर ते विटामिन्स जेके हुन में मैग्नेशियम कैल्शियम प्रोटीन पोटेशियम वग़ैरह जेके अव्हांजे जिस्म में जेकी खोट हूंदी आहे पाणीअ जी उहा पूरी कंदी आहे हॾनि जी कमज़ोरी हूंदी आहे उहा जेको आहे सो ख़तमु थींदी आहे कोलेस्ट्रोल खे फ़ाइदो ॾींदी आहे ब्लड प्रेशर जंहिंजो वधियल रहे थो उहे जेकॾहिं खाइनि था उनखे ऐं वाधि में वधि हूअं बि थधो त पंहिंजी जॻह ते आहे लेकिन हिन में जेके अज़ा आहिनि ऐं हिन में जेकी क़ुदिरती सलाहियत रखियल आहे उहा जेकी असांखे अल्सर न छॾींदी आहे मैदे जी तेज़ाबियत थी वेंदी आहे नंढे आर्डर में जेकी सोज़िश थी वेंदी आहे तकलीफ़ थी वेंदी आहे उन हवाले सां ई तमामु अक्सीर आहे जिन जे वात में खुश्की रहंदी हुजे या जिस्म में जेको आहे सो यानी खुश्की रहंदी हुजे वात मां जिन जे मां स्मेल ईंदी हुजे या जिस्म मां स्मेल ईंदी हुजे इवन उन में बि जेकॾहिं खीरे वंगे जो इस्तेमालु ज़्यादा हूंदो त अव्हांखे इहा तकलीफ़ कोन थींदी रोज़ाना घटि में घटि 2 खीरा वंगा जेको आहे सो इस्तेमालु करणु घुरिजनि ऐं घणा जी खल लाहे जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहिनि लेकिन खल सां जेको आहे सो हिनखे खाइजे त जेके खल में बि जेके हिन जे में अज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि में मुफ़ीद अज़ा हूंदा आहिनि ऐं उन मां वधीक फ़ाइदो पहुचंदो आहे जे सो जेके बि बीमारियूं आहिनि हीअ प्रोग्राम बीमारियुनि जे हवाले सां ई हूंदो आहे इन ई हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाजु होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते कयो वेंदो आहे ऐं क़ुदिरती तौर ते जेके हीअ फल फ्रूट सब्ज़ियूं ख़ुदा ताला पैदा कयूं आहिनि असांजे लाइ त उन्हनि में बि अलाह ताला इहा ई हिकमत रखी आहे इन जे करे एज़ अ फस्ट एड तौर ते तव्हां इहे शयूं इस्तेमालु करे सघो था त उन सां जेको आहे सो यानी चमड़ी जी बीमारी चमड़ी जी खुश्की मैदे जी खुश्की तेज़ाबियत वग़ैरह या इवन गर्मी में जेको आहे सो कंहिंखे लू लॻी वेंदी आहे या गर्मी जो मथे में इंतिहाई शदीद सूर पवंदो आहे त उन में बि जेको आहे सो खीरो वांगुरु इस्तेमालु करण सां काफ़ी फ़ाइदो पवंदो आहे ऐं पथरीअ जे लाइ बि जेको आहे सो हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे जेके असांजा गुर्दा हूंदा आहिनि उहे असांजे जिस्म जो एज़ अ फिल्टर यानी धोबी तौरु कमु कंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां खीरो वांगुरु वरी गुर्दनि खे जेको आहे सो सफ़ाई तौर ते धोबी तौरु कमु कंदो आहे यानी जेकॾहिं अव्हां खीरो वंगो खाओ था ऐं अव्हांजे खे जेकॾहिं पथरी आहे किचरो आहे या इन्फेक्शन आए तो उनके हू जो सो काफ़ी सारो फ़ायदो ही है। यानी दवा पाँगी जगह से रही पर जी अस देसी दसन में दिन तीरो वगो भी उन्होंने एक है। अड़े तरीके से हाडन की कमजोरी या हाडन में सूर हों तो एक्सटर्नली यूज तौर पर तुम सिर्फ़ जीरे वगे के जो गोडे में सूर है उन मलिंद तो उनमें भी फर्स्ट एड तौर पर काफ़ी फ़ायद मिल है। वात में जी माँ गाल कई बदबू है या छाला थी वजन था तो उनमें भी काफ़ी फर्क रह एतरे कदर जो जैसी जैसे चमड़ी सड़ी पे थी उत खीरो वगू जी मसाज कबी है तो उनमें भी काफ़ी जो सो फायद पे ये एक कुदरती शूं होंगे इन जो फवायद हूँ इन तिबी फवायद हूँ कंखे घट मालूम हूँ अस प्रोग्राम जो मकसद यो ही है बे तई अस अवेयरनेस पहुँचा तो ये शूँ अव तई पहुँचाण सा अहम हों इन कर पहुँचासी तो कड़े भी किस्म की मैदे की तकलीफ आ कब्ज़ है या जैसे गर्मी जो असर है तो उनमें जो खीरो वगो तमाम मुफीद है। वही मेहरबानी
1: दोस्तों वहाँ बुधाई हलो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब अस स्टूडियो में मौजूद अज तमाम घनी तमाम बेहतरीन डॉक्टर साहब जान दिनी त खीरे जा कड़ा फ़ायदा आहिन छो जो जी असांजी रोज़मर जी खुराक है फ्रूट आहिन फल आहिन उन्हनि जो असांजी सेहत ते तमाम गहरो असर हूंदो आहे तंहिंजे करे असांखे उन्हनि मां बि फ़ाइदो हासिलु करणु घुरिजे। जीअं हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे 50-51 सेंटीग्रेड जेको आहे सो गर्मी हली थी वञे पई इन खां पंहिंजो पाण कीअं बचाइजे। गर्मी जी लुक बि आहे ॿाहिरि निकिरूं था झोलो आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे माण्हू हलंदे गर्मी में किरी पवंदा आहिनि बेहोश थी वेंदा आहिनि रोड ते किरी पवंदा झंग में किरी पवंदा किथे भिट ते किरी पवंदा आहिनि। दोस्तनि जूं कालूं बि वठंदासीं शामिलु कंदा हलंदासीं। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम हलो कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे असांजो नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं बज़रिया लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था 0301-9196-851 ते असीं उहो ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त फ्रूट ऐं फल जेको आहे सो असांजे सिहत जे लाइ तमामु घणा कारा था आहिनि फ़ाइदेमंद आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी में बि डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था 0301-9196-851। जीअं गर्मी जी तमामु घणी मौसम आहे उन में फारवा जेकॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो था तॾहिं बि गर्मी जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि। ऐं खीरो इस्तेमालु कयो था जंहिंखे असीं वंगो चवंदा आहियूं सिंधी में उहो बि जेको आहे तमामु फ़ाइदेमंद आहे। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ अलहमदुल्ला केरु साहिब पियो ॻाल्हाए साईं? ख़ुशि आमद चऊं था आफ़िस सियाल साहिब खे। छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां?
3: डॉक्टर साहब इहो पुछंदा त मुंहिंजी नंढी तकरीबन 4 साल अॻु झटको थी वियो बुखार जो 15 ॾींहनि जी
1: हाणे
3: बीह थी सघे न वेही थी सघे।
1: अच्छा हिनखे टाइम लॻंदो तव्हां मेरापुर शहर जा आहियो डॉक्टर साहिब मेरापुर शहर में अचे थो अलाह ताला जे हुकुम सां अॻु में बि अहिड़ा मरीज़ आया आहिनि जिन खे मिसाल तव्हां हिन 6 महीननि जी पर 15 ॾींहनि जी झटको लॻो उहे बि न बीह सघनि पोइ नेठि उहे हली हली डॉक्टर साहिब वटि अहिड़ियूं वीडियोज़ बि पियूं हूंदियूं व्यूज़ पिया हूंदा आहिनि जेके असीं ॾेखारींदा आहियूं त भई ॾिसो इहे मरीज़ आयो अलाह ताला जेको असीं FM ते बि हलाईंदा आहियूं उहे पाण चवंदा आहिनि साईं असांजी नंढड़ी या नंढड़ो हाणे घुमे फिरे थो सही थी वियो आहे छो तव्हां रूबरू ॾेखारे वठो त वधीक बहितर थींदो साईं ऐं इनशा इन जो इलाजु मौजूदु अथव लाॻीतो इलाजु कराईंदो त नंढड़ी घुमंदी ठीकु आहे साईं। जी साईं डॉक्टर साहिब
2: जी साईं बिल्कुलु शिफ़ा ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे बाक़ी इलाजु कराइण सुनत आहे इन जे करे ऐं हिकु त नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे नंढे ॿार जे लाइ असां पहिरियां बि सभिनी खे ख़बर आहे त ॿुधाईंदा आहियूं त रूबरू उनखे ॾेखारियो वञे त केतिरी कंडीशन में जेको आहे सो नंढड़ो मुतासिर आहे उनखे ॾिसी पोइ ई जेको आहे सो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त उनजी दवा थींदी न थींदी केतिरी थींदी ऐं मां पहिरीं ॻाल्हि की त शिफ़ा रब ताला जे हथ में आहे इन जे करे नंढे खे रूबरू ॾेखारियो वञे।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेके हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। 0301-9196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था कंहिं बि बीमारी बाबति कॾहिं बि तव्हांखे मायूस न आहे थियणो। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे ऐं डॉक्टर सिर्फ़ु इलाजु कंदो आहे अलाह ताला जे हुकुम सां अलाह ताला जे फज़ुल सां काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके सिहत याब थी विया आहिनि, ठीकु थी विया आहिनि डॉक्टर साहिब जे दवाउनि सां, ऐं डॉक्टर साहिब इलाजु कंदो आहे, अलाह ताला उन्हनि खे शिफ़ा ॾींदो आहे। 0301-9196-8151 गर्मी जो तमामु घणो ज़ोर आहे, शिदत आहे, तंहिंजे करे अव्हांखे गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाइणो आहे, छो जो लाइट बि अक्सर करे ग़ाइबु रहे थी। असांजे प्यारे पाकिस्तान जो निज़ाम अहिड़ो ई आहे जो लोड शेडिंग तमामु घणी आहे, ऐं त तंहिंजे करे पंहिंजो पाण बचा करियो। इन जो बहितर हल इहो आहे त ख़ासि तौर ते मंझंदि जे टाइम 11 खां वठी 3 वॻे ताईं 4 वॻे ताईं बिल्कुलु घर खां ॿाहिरि निकिरण खां पासो करियो। पखो वग़ैरह उन जो जेको आहे सो हवा जो थोरो पासो वठो, थधि जो इन जो छांव जो पासो वठो, उस खां पंहिंजो पाण बचा करियो। ज़ाहिर आहे ही कारोबार आहे, दुनिया जो दस्तूर आहे, अव्हांखे उथणो आहे वेहणो आहे, शहर बि अचिणो आहे वञिणो आहे, ॻोठ में बि उथणो आहे वेहणो आहे, अचणु वञणु सॼो निज़ाम जेको आहे सो ही हलाइणो आहे, पर एहतियात ज़रूरी आहे। तंहिंजे करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सीनियर डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। जीअं अॻे हफ़्ते डॉक्टर साहिबु हिकु दफ़ो मौजूदु फारा जेके आहिनि उहो इस्तेमालु कयो, उहे तमामु थधा आहिनि, उन्हनि जो जूस ठाहे इस्तेमालु करियो। खीरे जो जीअं डॉक्टर साहिबु अॼु ॿुधाए पियो त तव्हां खीरे यानी वंगे जो इस्तेमालु करियो, उहो बि जेको आहे तमामु घणो थधो आहे। उनजो असुलु छा आहे, जेका इंसान जे यूज़ करे थो उनजो जेको तासीर हूंदो आहे, उहो तासीर इंसान जे जिस्म खे त जीअं उनजी स्टेमिना हूंदी त उहा गर्मी जी शिदत खे मुंहुं ॾेई सघंदी। इंसान में जॾहिं स्टेमिना मज़बूत हूंदी आहे त उनजी गर्मी जी शिदत खे इंसान मुंहुं ॾींदो आहे, फेस कंदी आहे उनजी बॉडी। 0301-9196-8501 प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ बि वेंदासीं, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो ई सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कालर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो खेरा।
2: हा हा हली हली डॉक्टर ॿुधायो कढायो दम ॿुधाइनि था टिनीअ में तुंहिंजी रग बंदि थी वई आहे।
1: हा
2: हा बाबा
1: कंहिं महीने खां वठी मंजूर हुसैन मेमण साहब वटि आया हुआ अॻिमें? डॉक्टर साहब वटि आया हुआ अॻिमें कॾहिं कोन? न न आउं डॉक्टर मंजूर साहब जी ॻाल्हि पियो करियां, उन वटि आया आहियो कोन आया हो? पोइ त तूं परेशान थिए ई न यार, हर भरो वरी ईंदो अठो महीनो थी वियो सूर जंग में खयूं, तुंहिंजी साईं सम्झ रग या सीटी पई हूंदी चवंदे मूंखे, जेको आहे जंग त सफ़ा उहो लॻी पई आहे। सुन ईअं ई लॻी पई अथई न? भड़कंदी न साईं, ब्लॉक हूंदी भड़कंदी। इन जो इलाज मौजूदु आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब वटि। ऐं मालिश कंदो आहे छा? मालिश कंदो आहे सर? बस माराए छॾी पंहिंजो पाण खे डॉक्टर साहिब खां FM तोखे ॿुधावे थो, हिन जी मालिश न करईंसि, मालिश न करईंसि, रहंदो सुजंदी। मालिश करे उन टाइम तोखे सुकून ॾींदी हूंदी, पोइ ॾिसंदो हूंदे त ॿिनि कलाकनि खां पोइ टिनि खां पोइ वधीक सुजंदी हूंदी, सोज कंदी हूंदी। सोज करे थी पोइ? मालिश खां पोइ सोज करे थी न? करे थी त न कर न ॾिस, तूं कंहिं सुठे डॉक्टर सां त राबितो कर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु रोज़ माण्हुनि खे मशवरो ॾे। किथां थो ॻाल्हाईं? को मसलो ई न आहे, सुभाणे ई हलिया अचो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मेहरापुर में मौजूदु आहे। 30 साल तजुर्बो अथसि, 30 साल जर्मनी खां पढ़ियल आहे, जर्मनी खां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे, जर्मनी वारनि जी फ्रेंचाइज़ अथसि। शहर में ई आहे मेहरापुर में। हा
2: निज़ाम
1: न न न न न हिते रत बत वारो निज़ाम न आहे, प्रॉपर तरीक़े सां इलाज आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर वॾो डॉक्टर आहे, मशहूरु डॉक्टर आहे। ठीकु
2: आहे,
1: बाबा साम्हूं ईंदे त तॾहिं जेको आहे सो ॾिसी करे तुंहिंजो इलाजु शुरू कंदो। ईअं न आहे त एतिरा या एतिरा पंहिंजो हकीमनि वारो ठगनि वारो कमु न आहे, फिक्स न आहे। मरीज़ ते डिपेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाए थो, FM ॿुध सॼो कुझु, डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ु ॿुधे थो पियो। ठीकु आहे, रेडियो में लाइव हले पियो तुंहिंजो आवाज़ जो।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर साईं।
3: जी जी, मूंखे इहा ॻाल्हि असां तव्हांजी ॿुधीसीं। हाणे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो, तव्हांखे ॿुधायूं था त एक्चुअली जेकी हीअ तकलीफ़ हूंदी आहे या हींअर हिन वक़्तु हर ॿिए टे शख़्स खे इहा तकलीफ़ आहे, ऐं खोड़ सारा पेशंट जहिड़ा तव्हां इन में मुबतला न आहियो, इन खां अॻे खोड़ सारा इन में तकलीफ़ में असां वटि ईंदा आहिनि, रोअंदा वेंदा आहिनि, ख़ुशि थींदा। सो वधीक शिफ़ा अलाह जे हथ में आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त रग जेकी हूंदी आहे उहा ब्लॉक थी वेंदी आहे, पोइ जीअं अवां ग़लती कई आहे कंहिं वटि ॿुध सुध वियो किथे रतु कढरायो कंहिं घणा ब्लेड हणाई।

0: ॿ महीना हले, टे महीना हले, छह महीना हले, ज़ाहिर आहे हर कंहिंजी कंडीशन हूंदी आहे, हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तकलीफ़ हूंदी आहे, कंहिंखे घणी वरितल हूंदी आहे, कंहिंखे थोरी हूंदी आहे, कंडीशन में थींदो उहा ख़बर आहे जेको आहे इहो ई थींदो आहे, करंट लॻंदा आहिनि, सड़ी बा टंग उहा सड़ंदी आहे, सुन थी वेंदी आहे, सूर थी वेंदी आहे, इहो सॼो रग जेको आहे सो ब्लॉक थियण जे करे आहे। सो इन जे करे मालिश बि इन जे लाइ सख़्तु मनो आहे, ऐं इन जे लाइ हींअर को बि ॾस पंधु अजायो आहे, छो जो हिन वक़्तु तव्हां कंडीशन बिगाड़े छॾी आहे, ॾंभ ॾियारे रत कढाए। सो इन जे लाइ इन जी ट्रीटमेंट थींदी असांजी क्लिनिक मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते, वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं मौजूदु आहे। सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदासीं। हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमो छंछरु आचरु। अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे। सो अव्हांखे इहो ई आहे, तव्हां रूबरू ॾेखारे वञो, वॾी महिरबानी
1: साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई, महिरबानी। हा हा बिल्कुलु, 6 ॾींहं हूंदा आहियूं, अरबा खमीस जुमो छंछरु आचरु अंगारो ॾींहुं क्लिनिक बंदि आहे। ठीकु आहे मुंहिंजे साईं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 लाइव पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानी, मोहबतूं। कॉल जो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे। 0301-96-8851 सखी जाम ॾातार खां हिन वक़्तु कॉलर लाइन ते मौजूदु हो, जेको बीमारी बाबति पुछी रहियो हो डॉक्टर साहिब खां त हुन जी रग ब्लॉक आहे ऐं हुनखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। जॾहिं रग ब्लॉक हूंदी आहे त यकीननि सॼी जंग में हिकिड़ो साड़ो रहंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी, ब्लड जो रोलेशन बंदि हूंदो, इंसान खे तकलीफ़ हूंदी, त हुनखे पंहिंजे हिसाब सां उहो ठीकु आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, हिकु ॿियो कॉलर आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: बिल्कुलु
1: माना बदहज़्मो, पेट भरियल, या जेकी शइ खात वरी हाज़मो नथो थिए, वज़न पेट ते, वज़न सीने ते, वज़न जलन हूंदी, मादे जो मसलो। हा बिल्कुलु, तव्हां सां मादे जो मसलो हूंदो। ॿियो छा ॾिसो, माना जिस्म में सूर
2: आहे,
1: बसि थकावट ई थकावट, तव्हां चवंदो बसि उथो ई न, सुता पिया हुजनि। हलो माशाल्लाह, FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी डॉक्टर साहब, तव्हां साईं जो सवाल सम्झी विया हूंदो।
0: जिसे बिल्कुलु भाउ, जेके आफ़री जी ॻाल्हि करे थो, पेट ते भर्थी वग़ैरह ब्लूमिंग चवंदा आहियूं, त उहो थी वेंदी आहे। अहिड़े तरीक़े सां उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि। बज़ाहिरी माण्हू खे शायदि ईअं ई लॻंदो आहे त असांखे हीअ तकलीफ़, लेकिन जेकी बि अहिड़ी का बि तकलीफ़ थिए थी त ज़ाहिर आहे उहा कंहिं बीमारियुनि जी अलामत हूंदी आहे। हाणे उनजो कहिड़ी बीमारी थी सघे थी, उहो जॾहिं साम्हूं ईंदो, उनखे डायग्नोस कंदा आहियूं, उनजी हिस्ट्री वठिबी आहे त हुनजे ख़ानदान में कॾहिं कंहिंखे लिवर प्रॉब्लम त आहे या न आहे, कंहिंखे अल्सर रही आहे न आहे, एच पैलोरी हूंदी आहे, कंहिंखे ॿिया पेट जा मसाला हूंदा आहिनि, उहो जॾहिं पेशंट साम्हूं ईंदो आहे त पोइ जेको
1: आहे ख़बर पवंदी आहे।
0: अहिड़े तरीक़े सां जेको अॼुकल्ह जी बेवक़्तु खाइणु हूंदो आहे, बाज़ारू घणो खाधो हूंदो आहे, उनजे
1: करे बि माण्हू इस्तेमालु करे थो, उन जे करे बि थींदो
0: आहे। चांहि जो इस्तेमालु ज़्यादा जेको आहे
1: सुबुह सां चांहि पियो बग़ैर कंहिं नाश्ते वग़ैरह
0: नाश्ते जे,
1: तॾहिं बि थींदो आहे
0: तरीक़े सां। या स्मोकिंग जेको आहे सो माण्हू घणी करे थो, या टेंशन माण्हू घणी वठे थो, या निंड माण्हू जी घटि थिए थी, खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि। इन जे लाइ असांखे इहो ई ॾिसंदासीं त मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ
1: होम्योपैथिक
0: ट्रीटमेंट कराइनि, रूबरू ॾेखारनि। फ़िलहालु जीअं जाण आहे, इहा सौंफ़, जीरो, अधु चमची रोज़ानो राति जो
1: भरियल साईं, इहो साईं खे सजेस्ट कंदुसि, माफ़ कजो,

0: केॾे ॿाहिरि निकिरणो ई आहे त महिरबानी करे जेको आहे सो पाण खे मथो ढके जेको आहे सो ज़रूरु निकिरजे ऐं चश्मे जो इस्तेमालु जेके बाइक वग़ैरह दोस्त हलाइनि था त उहो चश्मे जो इस्तेमालु ज़रूरु कनि छो जो जेके सिज जा तेज़ शुआउनि जा जेके किरणा आहिनि उहे असांजे अखियुनि ते जॾहिं पवनि था त असांजूं अखियूं मुतासिर थी सघनि थियूं ख़राबु थी सघनि थियूं इन जे करे उहो तमामु ज़रूरी आहे पाणी जो इस्तेमालु तमामु छो जो हीउ जेको हीट स्ट्रोक लॻंदो आहे पोइ इन में डिहाइड्रेशन थी वेंदी आहे ऐं जिस्म मां पाणी आठ मुकमल ई जेको आहे सो अचानक से ख़तमु थींदो आहे जंहिंजे करे पोइ माण्हू हाइपो में हलियो वेंदो आहे हाइपो में वञण जो मक़सदु इहो आहे त माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे ऐं जॾहिं माण्हू बेहोश थी वेंदो आहे त तकड़ि में उहो उतां निकिरणु बेहोशीअ मां ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे इन जे करे पाणीअ जो इस्तेमालु जिते बि माण्हू गॾु जेकॾहिं लॉन्ग ड्राइव ते वञे थो घणे पंध ते वञे थो त पाणी जी बोतल पाण सां गॾु ज़रूरु हुजे वक़्ति वक़्ते सां पाणी जेको आहे सो माण्हू ज़रूरु पीए लीमो पाणी पीए उहो तमामु मुफ़ीद आहे अॼुकल्ह जीअं बहिराड़ियुनि में ऐं लस्सी जो इस्तेमालु हिन मौसम में तमामु बहितरु आहे या मिठाई जो शरबत जेको आहे सो उहो बहितरु हूंदो आहे या ख़ुश्क आलू बुखारा मिलंदा आहिनि राति जो चार पंज दाणा ख़ुश्क आलू बुखारा चार पंज दाणा इमली जा यानी गिदामिड़ी जा राति जो पाणी में पिसाए रखो सुबुह जो नेराने उहो पाणी पियो अव्हांखे काफ़ी जेको आहे सो अव्हांखे सुधीराई मिलंदी ऐं अव्हांजो जेको गर्मी जो दर्जा हरारत आहे ऑटोमेटिकली घटिजी वेंदो डिहाइड्रेशन घटिजी वेंदी उहो बहितरु आहे गुलकंद जेको आहे सो तमामु बहितरु आहे राति जो पाणी में पिसाए रखो ॿ कारा मिर्च नंढिड़ो टुकड़ो मिसरी जो गुलकंद सुबुह जो जेको आहे सो हुनखे पूड़ी ऐं उहो इहो शुगर वारे मरीज़नि जे लाइ मनो आहे बाक़ी ॿियो पेशंट उहे हुनखे इस्तेमालु करे सघनि था काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पवंदो पाणी ऐं जो इंटेक यानी वधायो पाणी जेतिरो थी सघे ओतिरो तमामु घणो वधायो हिन गर्मीअ में जेको आहे सो गहरे कलर वारा कपिड़ा या जेको आहे सो थुला कपिड़ा पाइण सां घणनि जा शौक़ीन हूंदा आहिनि ऐं उहे इस्तेमालु कंदा आहिनि इन सां जिस्म पची सघे थो गर्मी वधी सघे थी इन जे करे लाइट क़िस्म जा कपिड़ा जेको आहे सो पायो नरम सॉफ्ट कपिड़ा पायो त इन सां बि जेको आहे सो अव्हांखे गर्मी खां बची सघो था ऐं इहो ई जेको आहे सो रस्तो आहे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा तव्हां विझी सघो था उन सां अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो पवंदो बजाए गोश्त वग़ैरह इन सीज़न में खाइण जे सब्ज़ियूं इस्तेमालु कयो उहे अव्हांजे लाइ तमामु मुफ़ीद आहे साई तूरी तमामु थधी भाॼी आहे ऐं कद्दू जी भाॼी तमामु बहितरीन आहे इहे जेको आहे सो तव्हां इस्तेमालु करे सघो था खीरो वंगो फारवा आलू बुखारा जरदालू इहे अव्हांजे लाइ पपीतो तमामु बहितरीन हिन मौसम में ई अलाह ताला जो हिकिड़ो करशमो आहे अलाह ताला जा हिकिड़ा देन आहे अलाह ताला जा तोहफ़ा आहिनि अव्हां जे लाइ ई मखसूस हिकिड़ो टाइम जे लाइ इहे शयूं अचनि थियूं ऐं पोइ जेको आहे सो हली वञनि थियूं इन मां जेतिरो थी सघे त ओतिरो तव्हां फ़ाइदो तमामु घणो वठो त जीअं अव्हांजे जिस्म में जेको आहे सो जेकी पाणीअ जी खोट डिहाइड्रेशन थी वञे थी या जेकी कमज़ोरी थी वञे थी माण्हू जिस्म न ढाल थी वञे थो उहो जेको आहे सो उन खां बची सघो था ऐं इहो करण सां अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ऐं अव्हां जेके फ्री ॾींहुं चेकअप कंदा आहियो उहे बि असां दोस्तनि खे ॿुधायो आख़िर में कुझु कयो
0: अॼु साईं प्रोग्राम जे शुरूआत में विच में अव्हां बि जेको आहे सो पेशंट्स खे दोस्तनि खे लिसनर्स खे ॿुधाईंदा आहियो असां बि ॿुधाईंदा आहियूं वरी ॿीहर ज़रूरु जेको आहे सो इहो नोट कराईंदा हलूं छो जो घणा अंगारे जे ॾींहुं असां वटि फ़ोनूं कंदा आहिनि क्लिनिक ते ईंदा लेकिन अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे इहो थोरो ज़हन में हुजे ऐं उनखां अलावा टे ॾींहं असां वटि चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे जेके हज़रात उन्हनि जेके ग़रीब हज़रात आहिनि उन्हनि मां फ़ाइदो वठी सघनि था मिसल जुमे जो ॾींहुं छंछर जो ॾींहुं आचर जो ॾींहुं असांजी टे ॾींहं चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे दवाऊं अलबत्ता पेशंट वठंदो आहे उन खां पोइ जेको आहे टाइमिंग सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहे ऐं क्लिनिक जो हंधु जेको आहे सो अव्हां सभिनी खे ख़बर आहे मशहूरु आहे हिन वक़्तु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड ते साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप अव्हां जीअं जेको आहे सो कोटड़ी खां ईंदो त कार्नर ते ई जेको आहे सो पंप आहे उनजे साम्हूं जेको आहे सो क्लिनिक आहे ऐं नंबर अव्हांखे पुकारियो वियो आहे ॿुधायो वियो आहे 0301-2196-8524 कलाक ई खुलियलु हूंदो आहे सिर्फ़ु इहा महिरबानी कंदा कयो जेके दोस्त राति जेको आहे सो ईअं वांदकाई वारी फ़ोनूं कंदा आहिनि उन में जेके असांजो कमु वारो पेशंट हूंदो आहे जेको ज़रूरी जेके मसइलो हूंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे छो जो ज़ाहिरी आहे त हर को माण्हू मसरूफ़ हूंदो आहे पंहिंजे कमनि कारनि में हूंदो आहे फ़ोन सिर्फ़ु असां उन्हनि खे नंबर ॾिना आहिनि त जेके जिन खे तकलीफ़ आहे त जीअं असां उन्हनि खे आगाही ॾेई सघूं ऐं हू उन मां फ़ाइदो वठी सघूं।
1: उन मां फ़ाइदो वठी सघूं। तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। इन हिते अॼोको प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान एडवोकेट हाकिम अली जिस्काणी खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान। अलाह वाहि।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: थींदो 7 जुलाई ते संदसि बड़ तेहरान खां कुम मुंतकिल कयो वेंदो। करबला ऐं नजफ़ में ताज़ियती जुलूस बरामद कया वेंदा। 9 जुलाई ते मशहद में बड़ मिटी माउ हवाले कयो वेंदो। शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई जी जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी ट्रंप हैरान थी वियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रंप चयो त मां समझंदो हुयसि ईरान जा माण्हू अयतुल्लाह ख़ामनेई सां नफ़रत कंदा हुआ। संदसि जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे। ख़ामनेई जी आख़िरी रस्मुनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाव करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरी रहियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे 1 ॾींहं में शिकस्त ॾिनी हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियण चाहे थो। असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मुनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद याददाश्त नामे जी ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर पाकिस्तान में थींदो। अरब मीडिया जी दावा। अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि, एटमी प्रोग्राम ऐं मुंजमद असासनि बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी फ़ौज जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो।

असां दुनिया जो सभ खां वॾो स्पेक्ट्रम ऑक्शन कयो। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। वफ़ाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तरड़ ऐं शेज़ा फातिमा जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेज़ा फातिमा चयो त इतफ़ाक़ी राय सां कानून साज़ी कई पई वञे, वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणण ज़रूरी आहे। आज़म नज़ीर तरड़ चयो त तालीमी मक़सदनि ऐं फ्री लांसिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे। कंहिं हिकु कंपनी खे नवासण वारनि इल्ज़ामनि जूं शाहिदियूं न आहिनि मिलियूं।

0: 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरियत जो कारो ढी है इन ढी ते अवाम के मैंडेट आइन ए पार्लियामानी जमहूरियत ते राता हो हयो हो। बिलाल भुट्टो जरदारी पेंजे पैगाम में चयो ता आमरियत समझो ता अवाम जो आवाज दबाए वेंदो पर शहीद बेनजीर ए केतनी कारकुनन जी कुर्बानियन साबित कयो ता अवामी हकमत के कदें भी शिकस्त न थी डेई सकजे। 5 जुलाई असके आइन की बरदस्ती ए जमहूरियत के तहफुज के अजम की याद दियारे तो अवाम की चूंडियल वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत माशाला मड़ी वही शजीलनामे मण चयो तो गैर जमहूरी अमल सियासत माशरे ए कौमी तरक्की ते गहरा नाकारी असर विधा शहीद भुट्टो ए शहीद रानी जमहूरियत आइन ए अवामी हकन लाए तारीखी जदोजहद कई। पीपीपी आइन जमहूरियत ए अवामी हकन की अलमबरदार है। कारगिल जंग के हीरो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान जो 27वीं नौमे शहादत अज मल्हायो पियो वञे। सवाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की आखिरी आरामगाह तकरीब सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ए सर्विसेज चीफ पारां खराज अकीदत पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान 5 जुलाई 1999 में कारगिल के वास्ते दुश्मन से विढ़ंदे शहादत माणी। दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी जो इतराफ़ कियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी भेटा पेश कंदे चयो आहे त कैप्टन कर्नल शेर खान की ला सवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रही। पाकिस्तान जा शहीद असा कौमी सरमायो आहिन। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवण है ता शहीदन की कुर्बानी के हमेशा कदर एहतराम से याद रखियो वेंदो। पीसीबी पारा वेस्ट इंडीज ए इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाए 16 रुकनी कौमी टीम जो ऐलान। शाहनवाज साणी के एक भेरो बीहर नजरअंदाज कर लाहौर में पीसीबी की मेन्स सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद चयो तो शान वसो की जाय ते बाबर आजम कौम टीम जो कप्तान होंद। सऊद शकील फिटनेस सबब टीम जो हिस्सो न होंद। आमिर जमाल अब्दुल्ला फजल अली उस्मान ए अजान अवेस स्क्वाड में शामिल होंदा। पुरम शहजाद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर नमाज़ खां इशा जे नमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते दिलाए 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-96-8851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाए. I realized I was made for music.
1: जब तक मैं जिंदा हूं तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा वफाक लाए सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर वडो चैलेंज आलमी इदारन खां माली सहकार जो इंतजार मारड़ा बाजियाब करायो बबरलोमी वारसन जो धरणो जारी कौमी शाहरा बंद करण जो चिताव सिंध के सरकारी स्कूलन में हिंदू शागिर्दन के लिए सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाने के लिए लेटर जारी नेब टीम पारा टंडो आदम जो दौरो तरक्याती स्कीमों जो जायजो ऑफिसरन में थरथलो सखर रेलवे इंतजामिया फाटक वट फोतिन के ही हादसे जो जिम्मेवार करार दे छो रेलवे इंतजामिया पारा हादसे जो जिम्मेवार कार ड्राइवर स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा 5 जुलाई पाकिस्तान जी

पेश है स्पेशल रिपोर्ट। 5 जुलाई पाकिस्तान के सियासी तारीख जो रुग एक आम डी न पर वो अड़ो मोड़ है जै मुल्क की जमहूरी सफर से गहरा असर छिया। 5 जुलाई 1977 से चूंडियल वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टे की हुकूमत जो तख्तो ऊंधो वो जैखा पोए पाकिस्तान की सियासी तारीख नए रुख इख्तियार किया। उन वाक्य न रुगो एक चूंडियल हुकूमत जो खात्मो आंदो पर मुल्क के आइनी निज़ाम जमहूरी अर्तका इदारियाती इस्तेहकाम ते भी डिघे मुद्दे वारा वार छड़िया। तारीख शायद आए तो पाकिस्तान के क़याम का मुल्क जो वो हिस्सो गैर जमहूरी तौरन फौजी हुकुमरानी सियासी मुदाखलत के वर चढ़ो है। जमहूरियत ज मुख्तसर दौर भी घणन ही चैलेंजन रुकावटन से गुजरिया। चूंडियल इदारन के मुकम्मल इख्तियार घट मिलिया जडे तो इक्तदार जहाँ अहम मरकज घणो कर जमहूरी इदारन का बाहर रहा। नतीजे में जमहूरियत पांजे असल रूह मुताबिक मुकम्मल तौर मजबूत न थी सकी। सियासी मुबसरन जो ख्याल है तो मुल्क में मुख्तलिफ़ दौरन दौरान जमहूरियत जहाँ मुख्तलिफ़ नमूना मुतारफ कराया वह कदें सियासी इंजीनियरिंग जरिए नवा सियासी इतिहाद जोड़िया वह कदें महदूद जमहूरियत जहाँ तजुर्बा थे जडे तो जदीद दौर में भी मुख्तलिफ़ सियासी फार्मूलन बहस जारी रो। उन तजुर्बन में मुल्क की सियासी इस्तेहकाम गहरा असर छिया। हर दौर में आइन की तशरीह इस्तेमाल बाबत बहस भी जारी रो। मुख्तलिफ़ हुकुमरान इक़्तदार के तसलसल लाए कानूनी आइनी तब्दीलियों आंदियों जै सबब आइन के असल रूह कानून की हुकुमरानी बाबत सवाल उठंदा रहा। सियासी तर्जा निगारन जो चवण है तो जडे भी आइन इदारन के असल किरदार के हटी कर कदम खया वह मुल्क के सियासी समाजी बोरान का मुंह दियण पो है। मुल्क के सियासी तारीख से नजर विझे त केतरन ही तजुर्बन के कौमी मुफाद जो नालो दिनों वो पर उन असर घना भेरा सियासी बेचैनी मुआशी कमजोरी इदारियाती तकरारन की सूरत में सामू आया। अज भी सियासी हलकन में उहा राय मौजूद है तो माजी में सबक सिखण जमहूरी रवायतुन के मजबूत करण वक्त की अहम जरूरत है। तजिया निगारन मूजिब पाकिस्तान के मौजूदा हालतुन में कढ़ण के लिए मजबूत जमहूरी इदारा कानून की हुकुमरानी आज़ाद पार्लियामेंट अवाम के मैंडेट जो एहतराम जरूरी है। 5 जुलाई की तारीख के केतरा ही मानू रुगो एक सियासी वाक़े तौर न पर कौमी एहतसाब तारीख में सीखण जो डी तौर दिसन था।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: It's 8:15 p.m.
4: This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
7: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahin
6: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
7: Rabte Laye Proprietor Gulam Nabi Mughal 0300-320-04372 Ai 0242-460100
8: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569
9: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जीए एफएम 88 नेटवर्क ते।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा वफाक लाए सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर वडो चैलेंज आलमी इदारन खां माली सहकार जो इंतजार मारडा बाजियाब करायो बबरलोमी वारसन जो धरणो जारी कौमी शाहरा बंद करण जो चिताव सिंध के सरकारी स्कूलन में हिंदू शागिर्दन के लिए सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाने के लिए लेट जारी नेब टीम पारा टंडो आदम जो दौरो तरक्याती स्कीम जो जायजो ऑफिसरन में थरथलो सखर रेलवे इंतजामिया फाटक वट फोतिन के ही हादसे जो जिम्मेवार करार दे छो रेलवे इंतजामिया पारा हादसे जो जिम्मेवार कार ड्राइवर स्पेशल रिपोर्ट भी अवां बुझी सकंदा 5 जुलाई पाकिस्तान जी

0: ही हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
0: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 ऐं 0242-46-01-00।

जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, आरजिया जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर, प्यार दे ए प्यार वठ कैसा न तकरार कर। एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई, गुलफाम गुल सादो थी रह, हर मानु सा तू प्यार कर, हर मानु सा तू प्यार कर।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा वफाक लाए सखर हैदराबाद मोटरवे तामीर वडो चैलेंज आलमी इदारन खां माली सहकार जो इंतजार मारड़ा बाजियाब करायो बबरलोमी वारसन जो धरणो जारी कौमी शाहरा बंद करण जो चिताव सिंध के सरकारी स्कूलन में हिंदू शागिर्दन के लिए सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाने के लिए लेट जारी नेब टीम पारा टंडो आदम जो दौरो तरक्याती स्कीम जो जायजो ऑफिसरन में थरथलो सखर रेलवे इंतजामिया फाटक वट फोतिन के ही हादसे जो जिम्मेवार करार दे छो रेलवे इंतजामिया पारा हादसे जो जिम्मेवार कार ड्राइवर स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुझी सकंदा 5 जुलाई पाकिस्तान के जमहूरी सफर जो कारो बाब कौमी असेंबली के मवासलात बाबत स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास चेयरमैन एजाज जखरानी की सदारत हेठ थो जैमें सिंध के रोडन की खराब हालत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे से तफसीली गौर किया गया। कमेटी के मेंबरन रमेश लाल सिंध में एनएच किथे नजर नथी अचे बोरे दौरान सेवण भरसा जो रोड कटो वो हो वो अजा तक बहाल नथी सको है। सिंध के रोडन की हालत इंतहाई खराब है समझ में नथो अचे तो सिंध से अड़ी नाइंसाफी छो थी रही है। मवासलात वे वजारत के अमलदार ब्रीफिंग डींदे बुधा तो हलंदड़ माली साल की PSTP में बलोचिस्तान के मनसूबन 115 अरब रुपया रखा वह सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे बाबत ब्रीफिंग डींदे अमलदार बुधा तो मनसूबे के 5 हिस्सों में विराय वो है। पहरियों हिस्सों हैदराबाद का टंडो आदम तीन 57 किलोमीटर बो हिस्सों टंडो आदम का नवाबशाह तीन 63.5 किलोमीटर टो हिस्सों नवाबशाह का नौशर फिरोज तीन 64.5 किलोमीटर चौथों हिस्सों नौशर फिरोज का रानीपुर तीन 60.9 किलोमीटर पंजों हिस्सों रानीपुर का सखर तीन 59.6 किलोमीटर डिघो होंद। ब्रीफिंग मूजिब पहरियों बियों हिस्सों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत एशियाई तरक्याती बैंक के सहकार से तामीर किया वो जडे टे हिस्से के लिए ओपेक फंडिंग कई वेंदी चौथे 5 हिस्से के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक माली सहकार फराहम कर रही है। अमलदार बुधा तो कोशिश है तो सेप्टेंबर तीन लागापल ठीकन से सयू थी वन टे हिस्से लिए सलाहकार की चूंड के लिए टेंडर जारी क्या वह जडे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वन बिन हिस्सों लाए एशियाई तरक्याती बैंक से मुहिदो फेबरवरी में थो इम्कान है। ब्रीफिंग मुताबिक सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे के लिए मवासलात वारी वजारत PSDP में 70 अरब रुपया रखने की सिफारिश कई वही हुई पर मनसूबे के लिए सिर्फ 30 अरब रुपये की रकम मुख्तस कई वही है। आशूर के ढी संग्रार में अगवा थियल मासूम न्याणी प्रिया कुमारी समेत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकन में गुम थियल मासूम बारन के बाजियाबी के लिए बबरलो बाईपास से कायम एहतजाजी कैम्प 8 दिन भी जारी रही। एहतजाजी कैम्प में सियासी समाजी अगवाणन वकीलन सहाफिन शहरन वे अंग में शिरकत कर गुम थियल बारन के वारसन से यज्ञ जो इजहार किया। शिरकत कदन मुतालबो किया तो प्रिया कुमारी समेत सभी गुम थियल मासूम बारन के फौरी तौर से बाजियाब कराया वे उन मौके से पेटे अलफ सिंध के अगूणे सदर इनायत अली जमाली जनरल सेक्रेटरी एजाज चांडियो समेत बेन अगवाणन वारसन खेन हर वक्त हुकूमत पुलिस में मायूसी मिली है जै सबब हु मजबूर थी बबरलो बाईपास से एहतजाजी कैम्प कायम करने मजबूर थे। गुम थियल बारन की बाजियाबी के लिए रुगो ऐलान बदर अमली कदम खया वन वारसन चिता दिनों तो जैसे मासूम बारन के जल्द बाजियाब न कराया वो तो एहतजाज जो दायरों वधायो वो इंदड़ मरहले में बबरलो कौमी शाहरा बंद किया वो। तालीम खाते तरफा सिंध के सरकारी स्कूलन में हिंदू शागिर्दन के लिए सनातन धर्म वारो निसाब पढ़ाने के लिए लेटर जारी किया वो है। तालीम खाते के निसाब वाले सलाहकार फौजिया खान तरफा समूरन डायरेक्टर डीडीओस के उन सिलसिले में हिदायतू जारी कई वह उन फैसले तहत 3 क्लास का 5 क्लास तीन के हिंदू शागिर्दन के हाँ सनातन धर्म बाबत निसाब पढ़ाया वो उन कदम जो मकसद अकलियती शागिर्दन के उन मजहबी तालीम फराहम करण है। नेब टीम तंडो आदम पहुंची वही तरक्याती स्कीम जो जायजो ऑफिसर में थरथलो मची वो उन दस में सिंध के 12 जिलों में पब्लिक हेल्थ एजुकेशन वर्क्स रोडस
बिल्डिंग समेत मुख़्तलिफ़ खातनि जे अरबे रुपयनि जी स्कीमुनि में गोबियुनि जी हलंदड़ जांच जे सिलसिले में नेब टीम टंडो आदम पहुची वई। टंडो आदम भिटशा रोड समेत टंडो आदम तालुके जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ऐं बिल्डिंग्स जो मुआइनो कयो। मालूम थियो आहे त नेब टीम सांगड़ ज़िले में ऑयल एंड गैस जी रॉयल्टीअ मां साल 2012 खां 2018 दौरान थियल तरक़ियाती कमनि जो जाइज़ो वठंदी। नेब टीम पंहिंजे दौरे बाबति मकामी इंतज़ामिया खे का आगाही नाहे ॾिनी। नेब टीम जे दौरे जो ॿुधी आफ़िसरनि ऐं ठेकेदारनि में थरथलो मची वियो आहे। ॿिए तरफ़ नेब टीम कंहिं बि क़िस्म जा तफ़सील ॿुधाइण खां लवाए रही आहे। ज़रियनि मूजिबि नेब टीम सांगड़ ज़िले जे छहनि ई तालुकनि टंडो आदम, शहदादपुर, सांगड़, जाम नवाज़ अली, सिंजोरो ऐं खिपरे में थियल मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती स्कीमुनि जो जाइज़ो वठंदी ऐं उन आधार ते रिपोर्ट तयारु करे आला अख़्तियारनि खे वधीक कार्रवाई जे लाइ मोकिलींदी। सखर आराई वेझो ट्रेन जे टकर में फोत थी वियल रिटायर्ड डीएसपी ऐं संदसि भाउ वारो मामिलो रेलवे इंतज़ामिया हादसे जी शिकार थियलनि खे ज़िमेवार करार ॾींदे मथनि FIR दाख़िल करे छॾी। फोतुनि जे वारसनि पारां बि ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करण जो चिताव ॾेई छॾियो। टे ॾींहं अॻु आराई भरिसां गणंगवाह वटि होजमालो ट्रेन जे बग़ैर फाटक जे रेलवे क्रॉसिंग खां गुज़रंदड़ कार खे टकर थियण जे नतीजे में रिटायर्ड डीएसपी दरिया ख़ान जतोई ऐं संदसि भाउ आरिफ जतोई फोत थी विया हुआ। जॾहिं त ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन मां हिकु ॼणे जी हालत हिन वक़्तु बि ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे। रेलवे इंतज़ामी हादसे जी ज़िमेवार कार ड्राइवर खे करार ॾींदे होजमालो ट्रेन जे इंचार्ज गार्ड अब्दुल हक महर जी फरियाद ते आबाद थाणे ते केस दाख़िल कराए छॾियो। रेलवे थाणे सखर जे SHO ज़ाहिद अबड़ो खां FIR लाइ मिलियल लेटर थाणे ते पेश कयो। FIR जे मतन मुताबिक़ कार ड्राइवर गैर ज़िमेवारी, लापरवाही ऐं तेज़ रफ़्तारी सां कार हलाईंदे गोसड जी सखर रोड ते ट्रेन सां टकराइजी वियो। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाज जे लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। वाकिए बाबति इतलाह मिलंदे ई कार्रवाई करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। गाॾी ऐं ड्राइवर ख़िलाफ़ वधीक क़ानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। ॿिए तरफ़ फोतियुनि जे वारसनि मुताबिक़ रेलवे इंतज़ामिया असांजे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो आहे, नुक़सान बि असांजो थियो आहे ऐं रेलवे इंतज़ामिया पंहिंजी नाअहली लापरवाही लिकाइण जे लाइ FIR बि असां मथां दाख़िल कराई वई आहे। हिननि चयो त जॾहिं होजमालो ट्रेन हलाइण जे लाइ तयारी कई वई हुई तॾहिं रेलवे ऐं ज़िले कौंसिल खे खुलियल फाटक नज़र छो न आयो। हुननि चयो त हितां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कामयाबु थियल आहे, उन जो पुटु होजमालो ट्रेन हलाई हुई, फाटक न हुजण सबबि जानी नुक़सान थियो आहे, जंहिंजी ज़िमेवारी रेलवे इंतज़ामिया ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी आहे। बिरादरीअ जे चङनि मुड़सनि सां मुशावरत बाद जल्द ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो।

0: हियो हन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।